ये तो बता वो छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन सब तलक छुपेगी ये तो बता।

हीरे होले होले नशा ये पिलाया किसने हीरे छुप के जलाया किसने ये मीठा मीठा जादू जगाया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

खुजके कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान खुजके कुर्बान।

झिलमिल झिलमिल तारा चमके डगमग डगमग नैया डोले रिम झिम बादल बरसे रामा हो गुन गुन गुन गुन भंवरे घूमे झर झर झर झर झरने झूमे झम झम पायल बाजे रामा।

बन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भाई।

महके कदम कुछ हमें।

0: सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।
1: खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जब बातें करते हैं या आप लोगों के मैसेजेस हमको मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। इस प्रोग्राम को आप अच्छी तरह से सुनते हैं और 50s 60s के ओल्ड मेलोडीज को आप एंजॉय करते हैं इस कार्यक्रम में खाबो खास सफर में। तो आइए आज के इस सफर को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं और आज के इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ पूजा है और वो भी बहुत ही अच्छे कलेक्शन को लेकर हमारे साथ है। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी चांद पर बातें की थी, बहुत सारे चांद वाले गाने थे, तो आज भी ऐसे ही चांद और सूरज, चांद सितारों से रिलेटेड बहुत सारे गाने उनके पास है, अच्छी कलेक्शन उनके पास है। आप सभी की तरफ से पूजा का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: चलिए पूजा, बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे कलेक्शन लेकर हमारे बीच में आए हैं 50s एंड 60s के। कुछ बताएंगे आप कौन कौन से गाने हैं आपके पास आज हमारे सभी श्रोताओं को सुनाने के लिए?
1: जी सर, मेरे पास बहुत सारे हैं पर मैं एक साथ तो नहीं बता पाऊंगी आपको तो मैं एक ही करके आपको पूरे गाने बताऊंगी।
0: ओके, चलिए पूजा, बहुत ही अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आप एक एक करके आपके पिटारे में से बहुत ही खूबसूरत गाने जो कलेक्शन आपने किया है 50s और 60s का, वो भी सी अक्षर वाले हम सुनना चाहेंगे। ऐसे कहते हैं कि आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं, उतनी ही हिम्मतें हौसला हम भी रखा करते हैं, मंजिलें अभी और दूर है हमारी, चांद सितारे तो राहों में मिला करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। तो चलिए पूजा, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में कौन सा एक खूबसूरत नगमा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाले हैं?
1: जी सर, गाने की बोल है चांद जाने कहां खो गए।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद दिलाया है, चांद जाने कहां खो गया, राजन कृष्ण साहब का लिखा हुआ, लता जी का गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा है। चित्रगुप्त ने इसे संगीत से सवारा है और मैं चुप रहूंगी 1962 का ये फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और बहुत ही अच्छा गाना आपने कलेक्ट किया है शुरुआत में। तो मैं चाहूंगा कि एक स्थाई आप हमारे श्रोताओं को अपनी आवाज में सुना के दिखाइए।
1: जी जरूर सर, क्यों नहीं।

ओके पूजा, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद दिलाया है। सुनील दत्त और मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गाना। कहते हैं प्यार में बेखबर हम कहाँ आ गए, मेरी आंखों में सपने से क्यों छा गए, दो दिलों की है मंजिल यहाँ, तुम ना आते तो हमको भी आना न था। आप सुना है रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आज आप सुनेंगे चांद सितारों पे। जी हाँ, और पूजा ने ऐसे ही कुछ कलेक्शन आपके लिए लेकर आई है, तो मैं पूजा को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। और आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह की चांद सितारों की बातें करते हैं। बहुत पहले ऐसे होता था कि बच्चे जो है शाम के समय में या नुमा शाम में जो है बाहर खेलते थे, और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद लोग थोड़ा छत पे भी टहलते थे और वहां चांद सितारों को देखते थे। लेकिन आज ऐसा मौसम है कि ऐसा शहरों में इस तरह का मौसम बन गया है या इस तरह की जो सिचुएशन

0: गया कि चांद सितारों को शायद देखना ही भूल गया। पूजा, चांद सितारों को कभी बैठ के देखती हैं आप?
1: बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर। सर आजकल इतना फ्री नहीं होते और टाइम भी नहीं मिलता, आजकल की भाग दौड़ की लाइफ है।
0: बहुत गोलमोल वाला उत्तर दे रहे हैं आप। एक्चुअली में टाइम सबके पास है, लेकिन टीवी सीरियल ने पकड़ के रखा है।
1: नहीं सर, जरूरी नहीं हर कोई टीवी और सीरियल ही देखता हो।
0: सिनेमा हम लोग सब भूल गए हैं इन चीजों को देखने में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधन हमारे हाथ में आ गए, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारी चीजें आ गए हैं जिसकी वजह से हम लोग कुदरत की तरफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली में समय निकाल के देना चाहिए, चांद सितारों को कुछ समय तक देखना चाहिए, इससे आपके मन में एक जो है एनर्जी मिल जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो समय निकालकर जरूर इन चीजों को देखिए आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सिर्फ यादों का एक सिलसिला रह गया, खुदा जाने उससे क्या रिश्ता रह गया, एक छांक हो गया जाने कहां, एक सितारा उसे ढूंढता रह गया। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। और पूजा बताइए कि आप दूसरा वाला गाना जो है आप कौन सा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
1: सर ये जो गाना है मेरा सबसे ज्यादा मनपसंद गाना है, ये सॉन्ग हम अपनी माँ के लिए, माँ है जब हम बचपन में जब नींद नहीं आती थी तो वो हमें लोरी गा के सुनाते थे। ये सॉन्ग जो है पूरा वो माँ को याद करने के लिए, ये समझ लीजिए। सर मैं इसके लिए शायरी भी बोलूंगी।
0: जी जरूर जरूर।
1: ये दुनिया है तेज धूप पर वो तो बस छांव होती है, स्नेह से सजी ममता से भरी माँ तो बस माँ होती है।
0: बहुत ही अच्छा शायरी आपने सुनाया है। और गीत कौन सा सुनाने वाले हैं आप?

ओके पूजा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को लग रहा होगा कि बहुत ही प्यारा सा गीत है, तो श्रोता ये भी सोच रहे होंगे कब ये गाना हमको भी सुनने को मिलेगा। जरूर मिलेगा सुनने के लिए, बस थोड़ा सा धीरज रखिए। और ये आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना और सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा हुआ। फिल्म आराधना 1969 में आई थी ये फिल्म, और बहुत ही प्यारा सा ये गाना है जिसको हम लोग अभी सुनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चंद लाइनों के साथ। पुरवाई वन में उड़े, पंची चमन में उड़े, राम करे कभी हो के बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े, जो भी तुझे देखे वो ये कहे कि इस माँ का ऐसा दुलार है तू। आइए, शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज किया गया ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए अभी आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अभी, और आशा करता हूँ आप सभी के दिल में कहीं न कहीं एक जो प्रेम है, बहुत ही खूबसूरत जो है अनुभव आपने किया होगा इस गानों के साथ में। तो आइए, दिल के आंगन में चांद का दीदार हो गया, मैं दीवाना हो गया, चांद बादलों में खो गया, मैंने बादल हटने का इंतजार किया, तब तक चांद किसी और का हो गया। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, इस बार अभी कौन सा गीत आपके पिटारे में है?
1: चांद को क्या मालूम, इसमें एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़का कहना चाहता है कि मतलब चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर, मतलब हम किसी से प्यार करते पर हम उसको बयां नहीं कर पाते कि तुम्हें मैं कितना चाहता हूँ।
0: ओके ओके, बहुत ही प्यारा संगीत है आपने याद कराया है। और चलिए, 1950s और 60s का ये कलेक्शन में से एक बहुत ही खूबसूरत गाना अभी हम सुनने जा रहे हैं। तो पूजा, मैं चाहूंगा कि इसे भी गा के सुनाएंगे आप थोड़ा।

ओके पूजा, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही प्यारा सा ये गीत है और हम लोग इस गीत का आनंद उठाएंगे। 1966 का लाल बंगला इस एल्बम से, इस फिल्म से ये गाना है और एंडीवर साहब ने इसे लिखा था, मुकेश जी ने इसे गाया था और उषा खन्ना ने इसे संगीत दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गीत को सुनते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों से बातें हो रही है, बहुत ही अच्छी बातें जो हैं हम सुन रहे हैं। और हमारे साथ पूजा है जिनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, चांद पर बहुत सारे खूबसूरत गाने उन्होंने कलेक्ट किए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ यादों का एक सिलसिला रह गया है, खुदा जाने उससे क्या रिश्ता रह गया। एक चांद हो गया जाने कहा, एक सितारा उसे ढूंढता रह गया। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबोखा सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, मैं चाहूंगा कि अब आपके पिटारे में कौन सा गीत है?
1: अगला जो मेरा गाना है वो चांद मध्य में। इस गाने में एक अपनी जज्बात को बताते हुए ये बता रही है कि वो चांदनी रात है और वो अपने दुख को चांद के सामने बयां कर रही है, और वो जो दुखियारी है वो बोलती है कि चांद दूर वादियों में बादलों के पीछे छिपके बैठा है और पर्वतों को प्यार करता है, दिल में बहुत सारे उसके उमंग भी हैं, वो इंतजार करती है अपने प्यार का। तो मैं इसके लिए एक शायद

बोल देती हूँ। उजाले की चद्दर ने चांद को सजाया है, उजाले की चद्दर ने चांद को सजाया है, सूरज को दिन का मेहमान बनाया है, इंतजार कर रहा है मेरे मैसेज का, कोई इंतजार कर रहा है मेरे मैसेज का, ठंडी हवाओं ने अभी अभी मुझे बताया है, ठंडी हवाओं ने अभी अभी मुझे बताया है। धन्यवाद सर।

ओके, तो चलिए अब इस गीत का आनंद उठाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, चांद मध्यम है आसमां छुपा है। तो चलिए जब भी आप देखते हैं चांद को, सितारों को, या फिर चांद अकेला जब आपको दिखाई देता है तो वो बादलों के बीच में आसमान में दिखाई देता है। तो आइए ऐसे ही खूबसूरत भाव इस गीत में भरा हुआ है, जिस गीत को अभी पूजा ने पूरा सा गुनगुनाया। आइए साई लुधियानवी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मदन मोहन का संगीत, फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यो पुनीरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं चांद सितारों की, और जब बात होती है चांद सितारों की तो दिल में एक अलग खुशी होती है। तो आइए इस खुशी को और बढ़ाते हैं। कहते हैं आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं, उतनी ही हिम्मत हौसला हम भी रखा करते हैं। मंजिलें अभी और दूर हैं हमारी, चांद सितारे भी राहों में मिला करते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। तो पूजा, अब आपके पिटारे में कौन सा एक और नया गीत है जो चांद से शुरू होता है?
1: ओके, तो सर आगे का जो मेरा गाना है वो है चांद फिर निकला। इस गाने में चांद को बताते हुए कहा गया है कि चांद जो है वो वादियों में से निकल रहा है, और ये बहुत ही काली अंधेरी रात है और उसमें चांद निकल रहा है और कोई किसी का इंतजार कर रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो इस गाने के लिए भी मेरे पास एक शायरी है और मैं आपको बताना चाहूंगी। कुदरत तराश, कुदरत का तराशा कोई हीरा हो तुम, कुदरत का तराशा कोई हीरा हो तुम, फूलों में चहकता भरा हो, फूलों में चहकता भरा हो, हर प्यार की गली से गुजरता हुआ एक चमकते चांद का नूर हो तुम, हर प्यार की गली से गुजरता हुआ एक चमकते चांद का नूर हो तुम।

ओके, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। चांद फिर निकला ये गीत है, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म पेइंग गेस्ट 1957 का। अभी आपके लिए खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तो सर, मैं अपने गाने को आगे बढ़ाते हुए अभी जो मेरे पास जो गाना है ये थोड़ा अच्छा है, इसमें साथ में एक बार कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा। गाने की लाइनें, चांद रात तुम हो साथ, तो इस गाने के बारे में मैं बताना चाहूंगी। इस गाने में चांदनी रात है और एक महबूब और महबूबा डांस कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा और अच्छा गीत है। इस गाने में भी चांदनी ही रात है, जैसे कि आप चांद के ऊपर से बात कर रहे हो, तो ये गाना भी मेरे चांद के ऊपर से ही है। अगर दो लोग साथ होते हैं तो दिल मचल जाता है और वो डांस करने लगते हैं, तो ये गाने में भी कुछ ऐसा ही है। तो इस गाने के लिए आज जैसे कि मैं आपको शायरी बता रही हूँ, तो इसके लिए भी मेरे पास शायरी है। हर चांद मिले हर सितारा मिले, हर चांद मिले हर सितारा मिले, हर कदम पर तुम्हारा सहारा मिले, हर कदम पर आपका सहारा मिले। जिंदगी में कभी अकेले ना रहें आप, कोई हम जैसा मिले, कोई हमसे भी प्यारा मिले। जिंदगी में कभी अकेले ना रहें आप, कोई हम जैसा मिले, कोई हमसे भी प्यारा मिले।

0: कदम अब तो सनम बाह थाम लो,
1: अपनी नजर अपनी निगाहों से थाम लो।
0: आपका क्या गया, भूल सा दिल मेरा कुचल कुचल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करे अजी अब तो दिल मचल मचल गया।
1: दिल का एक बार क्या क्या करोगे, निकल गए बदल बदल गया।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चांद सा चेहरा देखने की इजाजत दे दो, मुझे ये शाम सजाने की इजाजत दे दो। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं चांद पर। और पूजा ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन जो है लेकर आई है और हमारे साथ शेयर कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और पूजा को एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा, इतने अच्छे कलेक्शन 1950s एंड 60s के आप सुना रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूंगा पूजा, अब कौन सा आपका चांद वाला गाना है आपके पिटारे में, देख कर बताइए।
3: तो सर, आगे का जो मेरा गाना है, इस बार भी चांद के ऊपर से ही आपका चांद का सी अच्छा चल रहा है। तो गाने की बोल है, चांद तू यहाँ है और चांद तू वहाँ। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की को या लड़के को, किसी को भी अगर किसी से लव होता है सच्चा, तो उसमें जो लड़का होता है वो कहाँ पे भी जाए उसका चेहरा उसके सामने नजर आता है और हर चीज में वो उसको ढूंढती है और जो उसका भोला चेहरा है वो उसकी आंखों में भर जाता है। और इसमें तो खास करके चांद की बात है, तो चांदनी रात है और वो गाती है चांद के सामने और बताती है कि चांद निकला है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, उसे नींद नहीं आती है और जो उसका भोला चेहरा है वो उसकी आंखों में आके बस गया है। इसके लिए भी थोड़ी सी लाइनें बोल लेती हूँ, जिंदगी में कभी अकेले ना रहे आप, कोई हम जैसा मिले कोई हमसे भी प्यारा मिले। ऐसे तो जल्दी मिलता नहीं है किसी को प्यार, पर भगवान करे कि जिसका भी सच्चा प्यार हो उसको मिल जाए।
2: ओके ओके, नरेंद्र शर्मा जी का लिखा हुआ ये गाना है, आशा भोसले ने इसे गाया है, सुधीर फड़के साहब ने इसे संगीत से सवारा है, 1961 का ये गाना भावे की चुड़ियों से। तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं अभी, और बहुत ही अच्छा गाना है। कहते हैं, तू खाक जमीन के होकर उस चांद की हसरत कर बैठे, वो चीज बहुत ही ऊंची है तुम जिससे मोहब्बत कर बैठे।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर कार्यक्रम का आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं। कहते हैं हम साथ आसमानों की सैर कर आए, हर सितारे से हम दोस्ती कर आए, एक सितारा अच्छा लगा वो हम साथ ले आए। अब आप ही बताओ आप जमीन पर कैसे आए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग चांद सितारों की बातें सुनते हैं और उन सारी चीजों को देखने के बाद बहुत खुशी होती है। और वक्त निकाल कर जरूर कुछ समय दीजिए अपने लिए और चांद सितारों को जरूर देखिए, देखिए आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और जाते जाते एक सकारात्मक जो कहानी है वो मैं बताना चाहूंगा। एक ऋषि के दो शिष्य थे जिनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोचने वाला था और दूसरा नकारात्मक सोच रखता था और स्वभाव से बहुत क्रोधी भी था। एक दिन महात्मा जी अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको जंगल में ले गए। जंगल में एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लटके हुए थे। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और शिष्यों से कहा इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। शिष्य ने कहा ये पेड़ बहुत ही विनम्र है, लोग इसको पत्थर मारते हैं फिर भी ये बिना कुछ कहे फल देता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए, कितनी भी परेशानी हो विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम क्या देखते हो। उसने क्रोधित होते हुए कहा कि ये पेड़ बहुत दुर्लभ है, बिना पत्थर मारे ये कभी फल नहीं देता, इससे फल लेने के लिए इसे मारना ही पड़ता।

0: इस तरह मनुष्यों को भी अपने मतलब की चीजें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। गुरुजी हंसते हुए पहले शिष्य की बड़ाई की और दूसरे शिष्य से कहा कि तुम इससे सीख लेना। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग सोचते हैं, सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन सकारात्मक बनेगा। इसीलिए कहते हैं, गुलाब के फूलों को कांटों से गिरा देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की इतनी खूबसूरती का क्या फायदा, इतना सुंदर होने पर भी ये कांटों से गिरा है। जबकि उसी फूल को देखकर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि वाह, प्रकृति का कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिला दिया। बात एक ही है लेकिन फर्क है केवल सोच का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा, अभी कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं? आखिरी बहुत ही खूबसूरत गीत बताइए।
1: ओके सर, मैं अपने आखिरी गाने की ओर पहुंची हूँ। तो गाने की बोल है, चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने कब सोचा था। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जैसा अपने मन में पहले से छवि बना लेता है कि मुझे, मैं जिससे प्यार करूँ वो ऐसी हो ऐसी हो, और उसकी आदतें जो वो मेरी जैसी हो, और जैसा वो सोचता है जो जो खूबियां होनी चाहिए अगर वो उसमें मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है उसके लिए। तो इस गाने में भी ऐसा है, वो बोलता है जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। तो जैसे कि बोलना चाहूंगी कुछ, मोहब्बत के चांद को अपनी पनाह में रहने दो, लबों को ना खोलो, आंखों को कुछ कहने दो, दिल पे हाथ रखो और कुछ देर रहने दो, मुझे महसूस करो और अपने पास रहने दो।
0: मेरी पूजा, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है, चांद से महबूबा हो मेरी, बहुत ही प्यारा संगीत है जिसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, मुकेश जी ने इसे गाया है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म हिमालय की गोद में 1965 का। इसी गाने के साथ हम लोग चाहेंगे आपसे इजाजत, आपके लिए खूबसूरत गाना, और मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। पूजा, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर चांद वाले बहुत सारे गीत आपने सुनाया। तो चलिए श्रोताओं, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल दायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अलग कपड़े भी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात पुनेरी आवाज अर्थात 107.8 FM, आणि तुम्ही आहात आरजे जगदीश सोबत रंगतदार आणि बारदार कार्यक्रमात अलगची झलक मध्ये। अलग तुमची रसिक श्रोते हो, झलक आमची। अलग प्रेमी रसिक श्रोते

0: कचरा पुढे आवाज आनंदी रहा आनंद लुटा धन्यवाद।
1: इधर मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ।
2: ओ माफ करना भूल गया था। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ।
1: ए क्या हुआ?
2: हुआ ये मीनू, हमारे दरमियान ये साड़ी एक दीवार बन गई है।
1: अगला गीत इसे दीवार कहता है।

0: Agreed, Ivan Ilyinich.
1: नहीं, अब कोई दीवार नहीं मीनू।
0: मीनू नहीं, मीना।

0: कहीं दाग न लग जाए।
1: ठीक कहती हूँ, कहीं आग न लग जाए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का

0: अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।
2: हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नया, कुछ इंस्पायरिंग। और आज के शो में हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने शांत स्वभाव और सकारात्मक विचारों के लिए जानी जाती हैं, सिस्टर बी के श्रेया जी। सिस्टर श्रेया ने अपने कार्यक्रमों के जरिए हजारों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी बातों में एक ऐसी सरलता और गहराई होती है जो सीधे दिल को छू जाती है। चाहे तनाव हो, कॉन्फ्लिक्ट हो या पर्सनल ग्रोथ की बात, उनके समाधान हमेशा प्रैक्टिकल और आत्मीय होते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर श्रोता के लिए जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब अपने इमोशंस को समझना, मैनेज करना और दूसरों के इमोशंस को सम्मान देना। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक आत्मीय बातचीत के लिए। स्वागत है सिस्टर बी के श्रेया जी का।
3: थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में आकर के। और पुनेरी आवाज ये जो चैनल है, एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, कम्युनिटी की सेवा कर रहा है। आज हम भी इसका हिस्सा बन रहे हैं तो ये हमारा भाग्य है।
2: आपका स्वागत है सिस्टर। सिस्टर, मेरे कुछ सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि क्यूरियोसिटी जो जनरल पब्लिक की भी रहती है, हमारे श्रोताओं की भी रहती है, उनके आप कुछ समाधान देंगी तो बहुत मदद होगी।
3: जरूर
2: सिस्टर श्रेया, सबसे पहला सवाल यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सरल मतलब क्या है और यह सामान्य इंटेलिजेंस से कैसे अलग है?
3: इमोशनल इंटेलिजेंस, जब हम ये शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है उसका अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल है। आजकल कई बार क्या होता है, जब कोई परिस्थिति आती है तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कई लोग बहुत भय महसूस करते हैं, मतलब बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली फिट है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति इन इमोशंस को मैनेज कर पाता है। वो परिस्थिति में भी इन इमोशंस को न फील करके स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर पाता है।
2: जी, थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा बताया।

0: मेरा अगला सवाल है, वर्क प्लेस में जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मदद करता है और क्या यह प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाता है?
1: नेचुरली देखो, वर्क प्लेस पर जब हम आते हैं तो वो सिर्फ स्किल और टैलेंट की बात नहीं है
0: जी।
1: हम एक टीम के साथ काम करते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं। लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, तो जब अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग हैबिट्स हैं, तो वहां पर अगर हमें मिलकर काम करना है तो कभी टॉलरेट करना पड़ेगा, कभी अकोमोडेट करना पड़ेगा, मतलब कभी सहन कर रहे हैं, कभी समा रहे हैं, कभी लेट गो कर रहे हैं, कभी सहयोग दे रहे हैं। कई बार आप देखेंगे टीम में कई लोग वैसे बहुत स्किलफुल होते हैं, वैसे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मिल करके नहीं चल पाते। तो जो इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति है वो संस्कारों की रास कर पाता है और इसीलिए टीम मिलकर काम कर पाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी तो 100% पर बढ़ती है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा सिस्टर, बहुत अच्छा आपने बताया। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग को संभालने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस कितना शक्तिशाली टूल है?
1: रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने को अंडरस्टैंड नहीं किया। जितना हम अपने को समझते हैं, देखिए रिलेशनशिप्स में जब दो लोग एक साथ आएंगे
0: जी,
1: तो वो दो सोल्स हैं
0: जी,
1: जिनकी अपनी अपनी जर्नी रही है
0: जी,
1: तो वो बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं

0: तो हम उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं।
1: जी
0: हम औरों के संस्कारों से, उनकी कमी कमजोरियों से डिस्टर्ब नहीं होते और हम इमोशनली स्ट्रांग होकर उनको भी एम्पावर करते हैं कि वो भी अपने को परिवर्तन कर सके। लेकिन जो इमोशनली वीक होता है उसके अंदर एक्सेप्टेंस की पावर नहीं होती।
1: जी
0: वो फिर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है।
1: जी
0: और एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो वो हर्ट हो जाता है और उस कारण से फिर रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट होती है और कई बार फिर वो कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर हम अलग होने का भी सोचते हैं। रिश्ते एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है।
1: जी
0: अगर रिश्ते हमारे ठीक नहीं है तो उसका सिंपल सा कारण है कि हम इमोशनली वीक हैं और हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके अपने को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहिए।
1: थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है हमारे काफी श्रोताओं को इससे मदद मिलेगी और उनकी रिलेशनशिप स्टिल पॉजिटिव होगी।

0: सिस्टर श्रेया, आपके खुद के अनुभव में ऐसा कोई पल आया जब इमोशनल इंटेलिजेंस ने आपकी जीवन बदल दिया हो?
1: कोई एक पल तो क्या, दिन में मतलब हर दिन ही आप देखें क्या है लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशन।
0: जी,
1: कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीवन हमारे अनुसार हो।
0: जी,
1: वर्ल्ड इज नेवर गोइंग टू डांस टू आवर ट्यून्स।
0: जी,
1: इमोशनली स्ट्रांग का मतलब है कि जब आपके कुछ अनुसार नहीं भी है,
0: जी,
1: चाहे कोई सीन है, सिचुएशन है, व्यक्ति है,
0: जी,
1: हमें लगता तो बहुत प्यार से बात करेगा, आज उसका मन ठीक नहीं है, वो हमारे से थोड़ा रूडली बात करता है या थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, पर हम अगर डिस्टर्ब नहीं होते, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस।
0: जी,
1: तो दिन में कई बार ऐसा होता है, कभी हम ट्रैफिक में फंसे, कभी कोई लेट आ गया, कभी हमने बहुत प्लानिंग करी थी तो भी उस अनुसार नहीं हुआ, कभी
0: जी.
1: बहुत मेहनत करी थी तो भी सफलता नहीं मिली, हमने बहुत अच्छा सुनाया पर किसी ने अप्रिशिएट करने की जगह निंदा कर दिया
0: जी.
1: पर उन सब मोमेंट्स में अफेक्ट न होकर के स्टेबल रह पाना, वो मदद करता है इसके अंदर।
0: धन्यवाद सिस्टर। मेरा अगला सवाल है, क्या आज के डिजिटल और तेज रफ्तार दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है?
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है, डिजिटल एज होने से हम ज्यादा समय टेक्नोलॉजी के साथ बिताते हैं।
0: जी,
1: टेक्नोलॉजी के अंदर एनर्जी नहीं होती।
0: जी,
1: तो टेक्नोलॉजी के साथ जितना समय हम बिता रहे हैं, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, हम ग्रो नहीं कर रहे, हम स्ट्रांग नहीं बन रहे।
0: जी,
1: जैसे पहले हम टेक्नोलॉजी के साथ कम रहते थे, लोगों के साथ ज्यादा रहते थे।
0: जी,
1: ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि कहीं हमें सहन करना पड़ेगा, कहीं हमें समाना पड़ेगा, कहीं हम माफ करते हैं, कहीं पर हम सहयोग देते हैं, तो लोगों के साथ हम ग्रो करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे अनुसार चलती है, कभी कभी टेक्नोलॉजी के साथ भी हम इमोशंस तो फील करते हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी, लेकिन वो हमारे अंदर ही क्रिएट हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा, और इसीलिए वो हमें एम्पावर नहीं करता। बहुत इमोशंस फील करने के बाद भी जैसे हम टेक्नोलॉजी को छोड़ते हैं तो कई बार बहुत एग्जॉस्टेड और लोनली फील करते हैं, वेरस जब हम रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आते हैं तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, सपोर्ट सिस्टम फील करते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा सिस्टर श्रेया, आज के इस डिजिटल युग में डेफिनेटली हमारे श्रोताओं को इससे बहुत मदद मिलेगी, आपने जो सलाह दी।

0: मेरा आज का आखिरी सवाल है दीदी। सिस्टर श्रेया, क्या आपको लगता है कि लीडर्स के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से ज्यादा जरूरी है?
1: आईक्यू से ज्यादा जरूरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूरी बहुत है, क्योंकि लीडर्स को लोगों को भी चलाता है। एक होता है आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, पर करना तो वो लोगों ने, है ना?
0: जी।
1: मेरा आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन मेरी टीम मेरे से संतुष्ट नहीं है।
0: जी।
1: तो वो टीम ने तो उस आइडिया को सफल करना है।
0: जी।
1: तो वो टीम को चलाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। काम आप जो कर रहे हैं उसके लिए वो इंटेलिजेंस जरूरी है, जो आपका आइडिया है, स्किल है, टैलेंट है, स्टडी है, एक्सपर्टीज है, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट उसको एग्जीक्यूट लोगों ने करना है। और लोगों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे, उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट रहे, उनकी हमारे प्रति रहे, रिश्तों में कंटेंटमेंट रहे, तो मिल करके कार्य कर सके, उसके लिए एक लीडर को इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लीडर का काम है हर एक को सम्मान देना।
0: जी।
1: लीडर अथॉरिटेटिव हो, लीडर कंट्रोलिंग हो, लीडर थोड़ा सा बॉसी हो, आज नहीं चलता है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज कोई भी उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो लीडर कंट्रोल नहीं करे, इन्फ्लुएंस करे, एक्सपेक्ट नहीं करे लेकिन एक्सेप्ट करे, डाउट नहीं करे, ट्रस्ट करे, फॉरगिव करे, ये सारी चीजें अगर लीडर के अंदर हैं तो वो लीडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
0: थैंक यू सिस्टर श्रेया, बहुत ही सुंदर बातें आपने साझा की। इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए हम अपनी जिंदगी और रिश्तों दोनों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी बातचीत सिस्टर बी के श्रेया के साथ। मिलेंगे आपसे फिर एक नए विषय के साथ। बने रहें हमारे साथ रेडियो कुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहें, खुशियां बांटें।

राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

0: बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं हर बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं
1: नहीं नहीं।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना सा, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: क्यों ना क्यों सताते हो, होगा होगा।
2: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
3: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट वॉट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप

0: मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता, ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है, ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स, कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हेज हैपन, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी, दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन, सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल में। आप सभी का स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं। आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में बातें करेंगे और खुशी की बात यह है जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आज के हमारे खास वक्ता है पंक्ति दवे। जी हाँ, उन्हीं से हम बैंकिंग सेक्टर में कैसे करियर बना सकते हैं पूरा शो हमने कहा कि आप मेरी तरह होस्ट कीजिए। उन्हीं से सुनेंगे इस पूरे कार्यक्रम को और मैं भी आपकी तरह सुनने वाला हूँ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे पंक्ति और आज हम बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में करियर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं भारत में बैंकिंग के सफर की शुरुआत से, वो सफर जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आकार दिया और जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। दोस्तों, जब हम बैंक शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो होती है काउंटर, पासबुक और नगद लेन देन की। लेकिन असल में बैंकिंग उससे कहीं ज्यादा है। बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अगर अर्थव्यवस्था एक शरीर है तो बैंक उस शरीर की रक्तवाहिनी प्रणाली है जो पूंजी यानी धन को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाती है। सोचिए जरा, जब कोई किसान अपने खेत के लिए ट्रैक्टर खरीदता है, जब कोई महिला अपना छोटा व्यवसाय शुरू करती है, जब कोई छात्र एजुकेशन लोन लेकर अपने सपने पूरे करता है, तो हर जगह एक बैंक की भूमिका होती है। यानी बैंकिंग हमारे जीवन का एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत आधार है। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। भारत में बैंकिंग की शुरुआत 18th सेंचुरी के अंत में हुई थी। साल था 1770 जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का पहला बैंक अस्तित्व में आया। हालांकि यह बैंक बहुत लंबे समय तक नहीं चला, पर इसी ने भारत में बैंकिंग की नींव रखी। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। बाद में इन तीनों बैंकों का विलय हुआ और 1921 में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में जब इसे राष्ट्रीयकृत किया गया तो यह बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी देश का सबसे बड़ा बैंक है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने बैंकिंग को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में कई कदम उठाए। 1969 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इसका मकसद था बैंकिंग सेवाओं को केवल अमीर वर्ग तक नहीं बल्कि आम जनता तक पहुंचाना। और सच में उस फैसले ने भारत की दिशा बदल दी, क्योंकि अब तक बैंक सिर्फ शहरों में नहीं गांव और कस्बों में भी खुलने लगे। धीरे धीरे बैंक आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन गया। आप सोचिए, आज एक गांव का किसान, शहर का व्यापारी या नौकरी पेशा व्यक्ति सभी किसी न किसी बैंक से जुड़े हैं और यही बैंक हमारी अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक दौर की बैंकिंग की। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ और बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट बैंकों का प्रवेश हुआ। ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक जैसे बैंकों ने ग्राहक सेवा और तकनीक के नए मानक तय किए। आज हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 21

प्राइवेट सेक्टर बैंक और 45 से अधिक विदेशी बैंक और सैकड़ों रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। यानी बैंकिंग अब सिर्फ शहरों की चार दीवारी तक सीमित नहीं रही, यह हर गांव हर कोने में पहुंच चुकी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बैंकिंग ने हमारे सामाजिक ढांचे को भी बदल दिया है। कभी महिलाएं आर्थिक निर्णयों से दूर रहती थी, आज जनधन खाता और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए वे खुद बैंकिंग कर रही है, बचत कर रही है और अपने परिवार के भविष्य को संवार रही है। पहले गांव के लोगों को बैंकिंग की शाखा तक पहुंचने में मीलों चलना पड़ता था, आज बैंकिंग ऐप से सब कुछ उनके हाथों में है। और यह सब मुमकिन हुआ बैंकिंग के उस लगातार विकास से जो हर दशक में एक नई दिशा लेकर आया। अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ने भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के खाते खुले जिनके पास पहले कोई बैंक खाता नहीं था। ये सिर्फ खाते नहीं थे, ये थे आर्थिक आजादी के दरवाजे। दोस्तों, बैंकिंग का यही असली सौंदर्य है, यह केवल पैसों का लेन देन नहीं बल्कि विश्वास और अवसर का माध्यम है। और इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिंग सेक्टर ने लाखों युवाओं को रोजगार भी दिया है। हर शाखा में हर पद पर क्लर्क, अधिकारी, प्रबंधक सब अपने अपने स्तर पर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। आज बैंकिंग केवल नौकरी नहीं, एक राष्ट्र निर्माण की यात्रा है। इसलिए अगर आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं, जो जहां स्थिरता भी हो और समाज सेवा का अवसर भी, तो बैंकिंग की दुनिया आपके लिए बनी है। आगे सुनेंगे कि बैंकिंग में आने के क्या क्या रास्ते हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं होती है और किस प्रकार का प्रशिक्षण या योग्यता आवश्यक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पंक्ति और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पंक्ति और अब तक हमने जाना भारत में बैंकिंग का सफर कैसे यह सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुकी है। तो चलिए अब वक्त है ये समझने का कि अगर कोई युवा इस दुनिया में कदम रखना चाहता है तो कैसे रखे, यानी बैंकिंग में करियर के रास्ते क्या है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। सरकारी हो या निजी, दोनों ही क्षेत्रों में हर साल लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ स्थिरता यानी कि जॉब सिक्योरिटी, सम्मान और विकास के अवसर तीनों साथ में मिलते हैं। आइए जानते हैं इस रास्ते की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि बैंकिंग में दो मुख्य प्रकार के पद होते हैं, क्लरिकल कैडर यानी क्लर्क और ऑफिसर कैडर यानी कि अधिकारी। दोनों ही पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और चयन प्रक्रिया भी थोड़ी अलग होती है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाएं सबसे लोकप्रिय है। हर साल लाखों उम्मीदवार IBPS PO और IBPS क्लर्क की परीक्षा में शामिल होते हैं। इसके अलावा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी अलग परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे SBI PO और SBI क्लर्क। और अगर आप देश के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करना चाहते हैं तो वहां भी अलग अवसर जैसे कि RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड बी ऑफिसर मिलता है। अब सवाल आता है, कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट छात्र किसी भी विषय से आवेदन कर सकता है। चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से पढ़ाई की हो, बैंकिंग की परीक्षा में बैठने का अवसर सभी को मिलता है। कुछ पदों के लिए जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर विशेष योग्यता की जरूरत होती है, जैसे IT ऑफिसर के लिए कंप्यूटर साइंस, लॉ ऑफिसर के लिए लॉ में डिग्री, HR ऑफिसर के लिए MBA और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन। लेकिन अगर आप एक सामान्य ग्रेजुएट है तो PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के द्वार आपके लिए पूरी तरह खुले हैं। अब जरा समझते हैं कि यह चयन प्रक्रिया कैसे होती है। लगभग सभी प्रमुख बैंक परीक्षाओं में

तीन चरण होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू या लैंग्वेज टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसको प्रिलिम्स भी कहते हैं, प्रिलिम्स में सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति और इंग्लिश की बुनियादी समझ की जांच होती है। उसके बाद आती है मेंस। मेंस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो उम्मीदवार इन दोनों चरणों को पास कर लेते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है और बाद में स्थानीय भाषा में दक्षता का टेस्ट भी लिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है। चयन के बाद उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे अगर आप पीओ बनते हैं तो आपको बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स के तहत अकाउंटिंग, लोन प्रोसेसिंग, ग्राहक सेवा और नीतिगत नियमों की ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग लगभग 3 से 6 महीने तक चलती है। इसके बाद आपको किसी शाखा या विभाग में पोस्ट किया जाता है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, सीखने, समझने और आगे बढ़ने की। क्लर्क के रूप में चुने गए उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे ग्राहक सेवा, नकद लेन देन, पासबुक एंट्री और डिजिटल प्रक्रियाओं को सही तरीके से संभाल सके। दोस्तों, बैंकिंग करियर की एक बहुत खास बात है, यहाँ ग्रोथ की कोई सीमा नहीं। एक क्लर्क भी मेहनत और अनुभव के बल पर ऑफिसर बन सकता है और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर आगे चलकर ब्रांच मैनेजर, रीजनल हेड या जनरल मैनेजर तक पहुंच सकता है। समय समय पर बैंकों में इंटरनल प्रमोशंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिससे आप अपने अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और हर प्रमोशन के साथ आपकी जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता दोनों बढ़ती जाती है। पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट बैंकिंग में भी करियर की अपार संभावनाएं हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स हैं जिनमें काम करने का वातावरण तेज और परिणाम उन्मुख होता है। यहाँ वेतन अधिक होता है लेकिन प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा होती है। वहीं अगर आप रूरल बैंकिंग या कोऑपरेटिव बैंकिंग की दिशा में रुचि रखते हैं तो वहां भी कई अवसर हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने क्षेत्र में रहकर सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये संस्थाएं छोटे व्यवसायों, किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता देती है और इन संगठनों में काम करने का अनुभव आपको जमीनी स्तर पर समाज से जोड़ देता है। अब बात करते हैं किन गुणों की जरूरत होती है एक सफल बैंक कर्मी बनने के लिए। सबसे पहला है ईमानदारी और जिम्मेदारी, क्योंकि बैंक का काम विश्वास पर टिका होता है। दूसरा है संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। ग्राहकों से संवाद करते समय धैर्य और नम्रता बेहद जरूरी होती है। तीसरा है संख्यात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता यानी डेटा और अंकों के साथ सहज होना। और चौथा है तकनीकी समझ, क्योंकि अब बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। अगर आपके पास ये 4 गुण हैं, तो समझिए बैंकिंग में सफलता सिर्फ समय की बात है। तो दोस्तों, ये थी बैंकिंग में करियर की प्रमुख रास्ते। यह क्षेत्र न सिर्फ नौकरी देता है बल्कि एक दिशा भी देता है, सेवा की, स्थिरता की और आत्मसंतोष की। आगे हम बात करेंगे बैंकिंग उद्योग में बदलाव स्वरूप की और ये भी बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को एक नए युग में पहुंचा दिया है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पंक्ति, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

दोस्तों आपने देखा होगा बैंक में सिर्फ कैश काउंटर पर काम करने वाला ही कर्मचारी नहीं होता। एक बैंक असल में सैकड़ों भूमिकाओं से चलती मशीन की तरह है, जहां हर व्यक्ति, हर विभाग, हर निर्णय अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। तो चलिए अब जानते हैं बैंकिंग में कौन कौन से मुख्य क्षेत्र है जहां आप अपने सपनों का करियर बना सकते हैं। सबसे पहला है रिटेल बैंकिंग, यानी कि हर घर तक बैंक। ये वो विभाग है जहां ग्राहक और बैंक आमने सामने होते हैं। सेविंग्स अकाउंट, लोन, एटीएम, डेबिट कार्ड।

फिक्स डिपॉजिट, यही सब रिटेल बैंकिंग के हिस्से हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़े होते हैं। अगर आपको लोगों से बातचीत करना, उनके वित्तीय सवाल सुलझाना अच्छा लगता है तो रिटेल बैंकिंग आपके लिए सही रास्ता है। दूसरा है कॉरपोरेट बैंकिंग, यानी कि बड़े उद्योगों के साथी। यह वो क्षेत्र है जहां बैंक बड़ी कंपनियों और उद्योगों के साथ काम करता है। जैसे किसी फैक्ट्री को नई मशीनरी खरीदने के लिए लोन देना या किसी बड़ी कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग देना। यह विश्लेषण की क्षमता, जोखिम की समझ और वित्तीय रणनीति की समझ बहुत जरूरी होती है। तीसरा है एग्रीकल्चरल और रूरल बैंकिंग, यानी कि भारत की जड़ों से जुड़ा। भारत की आत्मा गांव में बसती है और वहां तक पहुंचता है हमारा बैंकिंग नेटवर्क। कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए फाइनेंस, ये सब इसी क्षेत्र का हिस्सा है। अगर आपके मन में सेवा की भावना है और आप समाज के आधार स्तंभ किसान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो यह क्षेत्र आपके लिए बेहद सशक्त मंच है। चौथा, डिजिटल और टेक्नोलॉजी बैंकिंग, यानी कि भविष्य का रास्ता। ये वो क्षेत्र है जहां आज बैंकिंग की नई पहचान है। डिजिटल बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्स, यूपीआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स। अगर आपको टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नए समाधान बनाने में दिलचस्पी है तो बैंकिंग का डिजिटल पक्ष आपके लिए सबसे रोमांचक अवसर लेकर आता है। ये वो क्षेत्र है जहां आपका ज्ञान थोड़ा विशिष्ट और गहराई वाला होना चाहिए। यहाँ बैंक अपने धन का प्रबंधन करता है, जोखिम का मूल्यांकन करता है और निवेश की रणनीति तय करता है। इस क्षेत्र में काम करने वालों को अर्थव्यवस्था, मार्केट और नीति तीनों की समझ होनी चाहिए। आज बैंकिंग में महिलाओं की सशक्त भूमिका देखने को मिलती है। आज भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री में महिलाएं न केवल कार्यरत है बल्कि नेतृत्व भी करती है। अरुंधति भट्टाचार्य, उषा अनंत सुब्रमण्यम और कई अन्य नाम आज प्रेरणा बन चुके हैं। बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिभा और ईमानदारी की पहचान तय करती है, लिंग नहीं। अगर हम करियर ग्रोथ और प्रशिक्षण की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे खास बात यह है कि हर कर्मचारी को समय समय पर ट्रेनिंग मिलती रहती है। नई नीतियां, नए प्रोडक्ट्स, नई तकनीक, सबका ज्ञान बैंक खुद आपको देता है। यानी एक बार बैंकिंग में कदम रख दिया तो सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, बैंकिंग कोई एक रास्ता नहीं, ये एक पूरा विश्व है जहां हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने, सीखने और समाज को योगदान देने का मौका मिलता है। आगे हम जानेंगे बैंकिंग उद्योग का बदलता स्वरूप। सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मैं हूँ आपके दोस्त आरजे पंक्ति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: चलिए बात करते हैं बैंकिंग उद्योग के बदलते स्वरूप की। बैंकिंग जो सिर्फ जमा और निकासी तक सीमित थी, आज भारत के हर नागरिक के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। वो दिन गए जब बैंक का मतलब था पासबुक, लंबी कतारें और कैश काउंटर। अब बैंकिंग का मतलब है मोबाइल पर एक टैप, डिजिटल ट्रांजैक्शन और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी। जब हम बात करते हैं डिजिटल क्रांति और बैंकिंग के नए चेहरे की, तो बीते एक दशक में भारत ने जो डिजिटल छलांग लगाई है, वो बैंकिंग क्षेत्र में एक शांत क्रांति लेकर आया है। कभी सोचा है, पहले जहां एक खाते के लिए घंटों लाइन लगती थी, वहीं आज कुछ मिनटों में ही ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। अब बैंक हमारे पास नहीं आता, हमारी उंगलियों पर आ गया है। UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और QR कोड, इन सब ने बैंकिंग को पेपरलेस, कैशलेस और टाइमलेस बना दिया है। चलिए बात करते हैं UPI के बारे में। दुनिया को सिखाने वाला भारत, यानी कि UPI सिस्टम। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर कोई UPI से जुड़ा है। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसका असर सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और गति आई है। ये वही भारत है जहां अब कैश नहीं तो क्या हुआ जैसी सोच बन चुकी है। अब बात करते हैं फिनटेक के उदय के बारे में। फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आज बैंकिंग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। कभी बैंक सिर्फ शाखाओं यानी कि ब्रांचेस से चलते थे, अब वो मोबाइल एप्स, चैटबॉट्स और AI से चलते हैं। फिनटेक कंपनियां जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, रेजर पे आज बैंकों के साथ मिलकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रही है। यानी बैंकिंग अब एक इकोसिस्टम बन चुका है जहां टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन तीनों साथ चल रहे हैं। ग्राहक सेवा ने भी नया स्वरूप लिया है। पहले ग्राहकों को बैंकिंग के हिसाब से चलना पड़ता था, अब बैंक ग्राहकों के हिसाब से बदल रहा है। अब बैंक पूछता है आपको क्या चाहिए, किस तरह की सेवा आपको सुविधाजनक लगेगी। ग्राहक अनुभव यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस अब केंद्र में है। AI चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और वीडियो KYC, इन सब ने ग्राहक सेवा को और आसान बना दिया है। इन सब के बीच साइबर सुरक्षा की बात होनी भी जरूरी है। साइबर सुरक्षा में नई चुनौती और जरूरत भी है। जहां टेक्नोलॉजी है वहां सुरक्षा का सवाल भी है। बैंकिंग सेक्टर आज सबसे अधिक निवेश साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है, क्योंकि अब पैसा सिर्फ तिजोरी में नहीं है, क्लाउड और नेटवर्क में भी है। इसलिए बैंकिंग में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, डेटा एनालिस्ट और टेक्नोलॉजी ऑफिसरों की भारी मांग बढ़ी है। यानी आने वाले वर्षों में बैंकिंग का मतलब केवल फाइनेंस नहीं, बल्कि टेक प्लस फाइनेंस यानी कि फिनटेक होगा। अगर हम बात करें वित्तीय समावेशन की, जहां गांव से ग्लोबल तक पहुंचने की बात होती है, बैंकिंग का एक और बड़ा परिवर्तन है वित्तीय समावेशन।

की फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज बैंक केवल शहरों में नहीं गांव में भी है। हर घर बैंक खाता अब सपना नहीं हकीकत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा। अब ग्रामीण भारत भी डिजिटल लेन देन में पीछे नहीं है। किराना दुकानों पर AEPS मशीनें हैं। BC यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट गांव गांव जाकर बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं सामाजिक क्रांति है। नए रोजगार और भूमिकाएं की बात करें तो बदलती बैंकिंग का अर्थ है नई नौकरियां और नई भूमिकाएं। आज बैंकिंग में सिर्फ क्लर्क या अधिकारी ही नहीं बल्कि डेटा साइंटिस्ट, ब्लॉकचेन एनालिस्ट, UX डिजाइनर, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ और रिलेशनशिप मैनेजर जैसे आधुनिक पद भी है। बैंक अब ऐसे युवाओं की तलाश में है जो तकनीकी समझ, विश्लेषण क्षमता और संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं। अगर हम ग्रीन बैंकिंग और स्थायी विकास की बात करें तो बैंकिंग अब पर्यावरण से भी जुड़ चुकी है। ग्रीन बैंकिंग की अवधारणा के तहत बैंक अब ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देते हैं जो प्रकृति सम्मत हो। पेपरलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और पर्यावरण मित्र निवेश, ये सब एक जिम्मेदार बैंकिंग संस्कृति की ओर कदम है। तो दोस्तों, बैंकिंग उद्योग अब सिर्फ लेन देन की दुनिया नहीं बल्कि विकास, नवाचार और सेवा की दुनिया बन चुका है। इसका स्वरूप बदल रहा है और उसके साथ बदल रहे हैं अवसर। अगर आप नए विचारों, टेक्नोलॉजी और समाज के विकास तीनों को जोड़ना चाहते हैं तो बैंकिंग का ये नया दौर आपके लिए है। याद रखिए, बैंकिंग सिर्फ नोटों और खातों का काम नहीं, यह लोगों के सपनों को साकार करने का माध्यम है। उम्मीद है आपको आज केवल जानकारी ही नहीं मिली होगी बल्कि प्रेरणा भी मिली होगी कि बदलाव, तकनीक और अवसर सभी आपके इंतजार में हैं। जो विश्वास बांटते हैं वही बैंकिंग के सच्चे बैंकर हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए विषय के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देर इज नो रीजन। कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह,

अच्छा सोचो, अरे सोच के देखो, खेत में उगते टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो

0: दीजिए। आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

01024 की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश रहो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रन नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

I just got a man,

0: फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को नए नजरिए से जब हमने देखा तो अगर पिछली कड़ी को आप याद हो देखें तो कहीं न कहीं हमें समझ में आया था कि आज जो एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं हर रिश्ते में, हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ है जो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें या तो हमारा कोई पास्ट हर्ट होता है या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है जो हमारा बैरियर क्रिएट कर रही है, या फिर फ्यूचर का कोई थ्रेट, आने वाले वक्त का कोई थ्रेट होता है जो हमें बैरियर क्रिएट कर देता है और हम उस बैरियर को नहीं तोड़ पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तोड़ना जरूरी है क्योंकि वो बैरियर टूटेगा, वो दीवार टूटेगी, तभी हम उस रिश्ते की खूबसूरती को, उसे पूरी तरह से हम एंजॉय कर पाएंगे। कैसे वो करना है, कैसे इन रिश्तों को सुंदर और सुदृढ़ बनाना है जिसके लिए हम हैं यहाँ पर, जो हमारे जीवन का मकसद भी है, ये तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। वन, बिकॉज जब हमने अपने पर्पस ऑफ लाइफ की बात की थी तो कहीं ना कहीं वो इतनी क्लैरिटी से आया था कि अगर हमारे सामने वो पर्पस ऑफ लाइफ है, और जो कि निकला था कि रिश्तों को जीना चाहते हैं, इंटरेक्शन जो हम हैं उन पूरी वैल्यूज को हम अपने अनुभव करना चाहते हैं रिश्तों में, तो जहां हम रिश्तों को जीना चाहते हैं ये हमारा पर्पस है, तो वो रिश्ते फिर बैरियर्स में क्यों रहे, वो बंधनों में क्यों बंधे रहे, वो दीवारों के पीछे क्यों रहे, तो कैसे तोड़े उन दीवारों को।
1: एग्जैक्टली देखो कितना कनेक्टिविटी बनती गई कि पर्पस ऑफ लाइफ था रिश्तों में खुशी को एक्सप्रेस करना, लेकिन जब संबंधों में आए तो एक्सप्रेस करने की बजाय मांगने लग गए, मांगने लग गए, नहीं मिला, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन जीने का क्या लक्ष्य है। दैट्स वाई दैट क्वेश्चन वॉज कमिंग अप अगेन एंड अगेन। राइट, ट्रू। सो वी आर रेडी टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, वी आर गोइंग टू वर्क, राइट? We are not going to wait for
0: the other person to work.
1: Fundamental is ये कि हर एक एक सेकेंड के लिए रुक कर अपने आप से पूछे कि सामने चाहे कोई भी है, अब उस कोई में किसी को भी डाल दो, उस फ्रेम ऑफ पिक्चर में मदर इन लॉ है, बॉस है, एनीबडी, समटाइम्स कुड जस्ट बी अ नेबर, यू नो, कोई भी हो सकता है। एम आई रेडी टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप एंड देन विल सी हाउ वी स्टार्ट डूइंग इट। संबंधों में जो सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ एक बातों को हम देखते कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत बड़ी नहीं, इनको हम अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो एनर्जी फ्लो है ये बहुत स्मूथ चलेगा। सबसे बड़ी पहली इम्पोर्टेंट बात हमें अपने आप से पूछना होगा कि ये संबंध है कहाँ पर, वेयर आर दीज रिलेशनशिप्स
0: हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में।
1: सो वेन आई थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप विद यू, आई लुक एट यू, राइट? वॉट इज माई रिलेशनशिप विद कनुप्रिया, सो आई स्टार्ट लुकिंग एट कनुप्रिया, दैट मीन्स माई रिलेशनशिप विद यू इज हियर, आउटसाइड हियर। बट स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाते कि रिलेशनशिप जो हम, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स को बाहर देखते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन रिलेशनशिप्स बाहर होने से पहले पहले वो रिलेशनशिप अंदर है। आई फर्स्ट क्रिएट अ रिलेशनशिप, आई फर्स्ट क्रिएट अ रिलेशनशिप हियर इन माई कॉन्शियसनेस। क्यों मैं अपना रिलेशनशिप पहले अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट करती हूँ? क्योंकि मैंने आपको वहां क्रिएट किया हुआ है, और क्योंकि मैंने आपको वहां क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले तो मेरा रिश्ता आपके साथ वहीं अपनी कॉन्शियसनेस में जुड़ना शुरू हो जाता है। अभी आप हो भी नहीं सामने, लेकिन मेरा अंदर आपके साथ एक रिश्ता चल रहा है। अब मैंने आपको जो क्रिएट किया हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन माय परसेप्शन अबाउट यू, वट एवर परसेप्शन आई हैव अबाउट यू। अब किसी भी एक को ले लें, टेक एनी वन पर्सन एंड लेट्स लुक एट हाउ दिस हैपन्स। क्योंकि अगर ये हमें क्लैरिटी से समझ में आ गया कि ये अंदर कैसे काम करता है, तो बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, है ना? तो किसी एक को भी ले ले और उसको अंदर यहां देखें कि हमने उसको अपनी कॉन्शियसनेस पे किस आधार से क्रिएट किया हुआ है। एंड ट्राई एंड टेक समवन यू आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल विथ, क्योंकि आर एम इज कि हम अपने रिलेशनशिप को हील करें। तो उसको हमने यहां अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया है बेस्ड ऑन माय परसेप्शन। मेरा परसेप्शन किस चीज पर बेस्ड है? माय बिलीव्स अबाउट यू, एंड माय बिलीव्स अबाउट यू आर बेस्ड ऑन माय पास्ट
0: एक्सपीरियंस, यस,
1: माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द फीलिंग्स दैट गॉट क्रिएटेड ड्यूरिंग दोज एक्सपीरियंसेस। तो पास्ट एक्सपीरियंस

0: इन-लॉ को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, मतलब लाइक अब उनके साथ मेरे व्यवहार में मैं हूँ, तो आपने कहा कि उनकी मेरा परसेप्शन उनके लिए, मैं मैरिड हूँ, ये नहीं कि मेरे भी मैरिज होनी है, आई एम मैरिड एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, सो आई नाउ
1: देखो कितना इजी है, वी नो इट ऑल द टाइम, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर हियर, दैट्स ऑल, माय रिलेशनशिप इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हियर, आई नो एंड आई एम राइट, आई नो. तो यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस में उसको हम क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड माय फीलिंग्स.
0: ओह माय गॉड, हमारा पूरा बेस जो है वो यहाँ हर बार जो है कहीं ना कहीं
1: हिल जाता है.
0: हाँ, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांगली इनग्रेन्ड होते हैं और वही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ नजर आ जाते हैं. ओके,
1: है ना. तो मैंने आपको यहाँ क्रिएट कर दिया, अब जिस कॉन्शियसनेस में मैं आपको यहाँ क्रिएट करूंगी उसी तरह की एनर्जी मैं आपके ऊपर थ्रो करूंगी, एंड व्हाट एवर एनर्जी आई थ्रो ऑन टू यू द सेम एनर्जी आई विल गेट बैक. सो आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द रिलेशनशिप इवन विदाउट इंटरेक्टिंग विद यू.
0: अच्छा, और मैं बेसिकली तो बड़ी बेचारी होती हूँ.
1: हाँ,
0: क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, पर मैंने सिर्फ आपकी परसेप्शन,
1: यस, मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है वो परसेप्शन,
0: वो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे,
1: एब्सोल्युटली, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, कि हाँ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी थे उसके आधार पर मैंने वो कॉन्शियसनेस में आपकी एक इमेज क्रिएट की है, डिपेंडिंग ऑन उसकी क्वालिटी उस तरह का रिश्ता मेरा आपके साथ मेरी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी जुड़ गया है, एंड जिस तरह की अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी उस पर थ्रो की, नेगेटिव एनर्जी इज गोइंग टू कम इन रिटर्न. जहां मुझे ये प्रोसेस समझ में आ जाता है, आई अंडरस्टैंड अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और वो ये कि मेरे रिलेशनशिप का, किसी के साथ भी मेरे रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है, दैट इज द विजन दैट आई हैव क्रिएटेड अबाउट देम,
0: इमेज आई हैव क्रिएटेड, यस, यू नो,
1: इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू बिहेव और स्पीक टू मी नाउ.
0: ओके, सपोज दे आर बिहेविंग, शी हैज बीन बिहेविंग बैडली टू मी, मतलब मेरा पूरा मेरा जो उनके वो उनको मैं बर्दाश्त नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं एक इमेज क्रिएट करूँ कि वो बहुत अच्छी है, या
1: वो एक इमेज क्रिएट करूं इज नॉट अ फॉल्स इमेज. पहली बात तो एक तो ये है कि जो सामने वाला है उसके अंदर विशेषताएं भी हैं, कमजोरियां भी हैं. हम अपनी पिक्चर किस कलर से बनाते हैं?
0: सारी कमजोरियों से, और वो भी वो जो मेरे साथ डीलिंग में आ रही है कमजोरियां.
1: फाइन, लेकिन मेरे साथ डीलिंग में दोनों चीजें आने वाली है ना, विशेषताएं भी आएंगी, कमजोरी भी आएंगी. मैं एक कमजोरी का कलर लेती हूँ और उससे पिक्चर पेंट करना शुरू करती हूँ. लेट्स टेक, आई जस्ट टेक योर वन वीकनेस, मैं आपकी एक वीकनेस ले लूँ कोई भी और उसके साथ आपकी पिक्चर पेंट करना शुरू कर दूँ. अब मेरा रिलेशनशिप कौन सी
0: है? वो ऐसे ऐसे एक के बाद एक जुड़ती जाती है. इट्स नॉट डिफिकल्ट
1: नाउ, सी हाउ इट विल हैपन. सो आई हैव टू बिगिन ओनली विद योर वन वीकनेस. अगर मैंने कोई आपकी एक कमी पकड़ ली, यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किया, दैट विल बी माई रिलेशनशिप. मैं नेगेटिविटी की एनर्जी फेंकूंगी, आपसे नेगेटिविटी की एनर्जी फिर आएगी, मैं नेक्स्ट वीकनेस को पकड़ूंगी, थर्ड वीकनेस. लेकिन ये सारी चीजें कहाँ क्रिएट हो रही हैं? व्हाट इफ आई वुड हैव स्टार्टेड द पिक्चर विद वन स्पेशलिटी, आपकी एक विशेषता, आपकी एक क्वालिटी, क्योंकि दोनों है ना.
0: लेकिन आप मेरे साथ तो बुरा बुरा कर रहे हो, उसके बावजूद भी मैं आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करूं.
1: कोई ऐसा आपको मिला जिसके अंदर एक भी विशेषता नहीं है?
0: नहीं, नहीं होगी, लेकिन आप मेरे साथ तो करते जा रहे हो. क्यों हम दूसरे के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो मुझसे मेरे साथ बुरा कर रहा होता.
1: हमने पहले ही देखा कि दूसरा कोई बुरा तो कर नहीं कर रहा, वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, लेकिन मुझे वो क्या लग रहा है
0: कि वो
1: वो गलत है. हो सकता है कि वो जो कर रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग टू मिक्स the likes and dislikes with the judgment. Let's say आपने जो कहा mother-in-law ने कहा कि ये कपड़े नहीं पहनो, you know, हमारे घर में साड़ी पहननी चाहिए, simple. आपको आदत है आज दिन तक आप बाहर निकलते हैं तो आप अपनी jeans और skirts और जो भी पहनते हैं. It's just a like and a dislike. For her also it was just a dislike, but for you वही जीन्स वो एक लाइक थी. लेकिन वो लाइक और डिसलाइक को हमने क्या लेबल कर दिया? मेरी मदर इन लॉ ही ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत ये है. फिर मैं उसको छोटी छोटी बातों पर कौन से लेबल से देखूंगी?
0: नैरो माइंडेडनेस, हर चीज,
1: बिकॉज
0: खाना बनाने पे, बाहर जाने पे, हर चीज पे मैं स्पेक करती जाऊँ.

0: picture will get darker and darker with that consciousness. अब जब हमें परमात्मा से ये ज्ञान मिलता है तो हमें विशेषताएं और कमजोरी इन दोनों पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है. वी सी द सोल इन इट्स राइट परस्पेक्टिव एंड दैट इज प्योर आत्मा, पावरफुल आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा. ओके, देर आर लॉट ऑफ अदर वीकनेसेस और वट एवर राइट नाउ, लेकिन एक्चुअली वो कौन है? तुम हम ज्ञान के आधार से जो संबंध जोड़ना कोशिश करते हैं वो किस आधार से है? प्योरिटी इन द विजन, कि हम उसको किस दृष्टिकोण से यहाँ इमेज क्रिएट करें. अब उस ह्यूमन बींग की जो हम पिक्चर क्रिएट करें वो किस फॉर्म में क्रिएट करें, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो कौन है. तो लेबल्स हटाएं, रिश्ते भी हटाएं, और उसको कौन लें कि वो कौन है? प्योर सोल.
1: उसे माफ करना कितना मुश्किल है, वो प्योर सोल की तरफ जा पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने आप को बचाया ही हुआ है उसके उन लेबल्स के कारण. यू नो,
0: बचाया हुआ है
1: इन द सेंस कि मैंने अपने आप को गुस्से के या हेट्रेड के उसमें रखा हुआ है कि शी इज बैड, शी इज बैड, शी इज बैड.
0: या बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग आवरसेल्व्स, राइट? आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ एंड टू हील माई सेल्फ आई विल हैव टू क्लीन अप हियर एंड आई वॉन्ट कि मेरे जो सारे रिश्ते हैं वो कैसे हो जाए बहुत स्मूथ. तो आपके प्रति एक, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मुझे आपकी जो पिक्चर मैंने अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट की हुई है उसको चेक करना पड़ेगा कि मैंने आपके प्रति क्या क्या ऐसे पास्ट की बातें, कौन सी ऐसी ऐसी बिलीव्स पकड़ कर रखी हैं जिसके कारण आप आज के समय में कैसा भी बिहेव करें मैं आपके साथ फिर भी आपके प्रति कैसा सोचती हूँ? नहीं, ये तो है ही ऐसे. तो वो रिश्ता कहाँ चल रहा है? अभी भी यहाँ चल रहा है, लेकिन everyone is changing every day, aren't they? हम हर रोज एक रियलाइजेशन से, एक परिवर्तन से गुजरते हैं. लेकिन एवरी टाइम आई मीट यू, अगर मेरे रिश्ते का फाउंडेशन वो कॉन्शियसनेस होगा, विल आई हैव द राइट एनर्जी?
1: सो एवरी टाइम आई शुड मीट द पर्सन विद द ब्लैंक कॉन्शियसनेस.
0: एब्सोल्युटली, जिसको परमात्मा कहते हैं एब्सोल्युटली क्लीन चित्त. जो चित्त है उसको बिल्कुल क्लीन कर दो, जिसमें कोई भी पास्ट की बातें नहीं है. आई नो इट सीम्स टू बी वेरी चैलेंजिंग, बट देन दैट्स द एफर्ट. कि कोशिश बार बार करें कि अपनी कॉन्शियसनेस में हमने जो पिक्चर क्रिएट किए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी अंडरस्टैंड कि आई एम द आर्टिस्ट एंड आई एम क्रिएटिंग द पेंटिंग. इट्स लेस अबाउट यू. आप देखो कितनी बार ऐसा होता, आप वो ही कनुप्रिया है, लेकिन अलग अलग लोग आपके बारे में अलग अलग सोचते हैं ना, और अलग अलग लोगों के साथ. इसीलिए हमने कहा कि कुछ लोगों के साथ हमारा अच्छा और कुछ लोगों के साथ हमारा रिश्ता ठीक क्यों नहीं है? हम तो वही है ना. सपोज लेट्स से आई एम अ बैड पर्सन, तो फिर मेरा तो किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं होना चाहिए. देन व्हाई इज इट हैपनिंग दैट विद सम पीपल आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड विद सम पीपल इट्स जस्ट नॉट वर्किंग? That means it's less to do with who I am and it's less to do with who they are. It's more about
1: the image I have, yes.
0: That we create
1: about. So, again, clean image bhi rakhe, wo bhi itna wahan tak hum kab pahunchenge, pata nahi baba.
0: Isliye Paramatma Shiv Baba hame effort ye karwate ki har baar jab bhi kisi se milo, ek thought create karo. आत्मा,
1: प्योर आत्मा,
0: ताकि इट विल बिकम. देखो क्या होगा, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ योर पास्ट यहाँ पर, अब मैं बैठकर ट्राई करूँ कि एक एक को क्लीन करना, वेरी चैलेंजिंग. आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. मैं उसी पास्ट में चले जाऊंगी शायद. क्यों ना हम एक ट्राई करके देखें कि जब भी हर एक से मिले तो एक थॉट के साथ, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आर पेंटिंग, तो क्यों ना उस कलर के साथ अपना नेक्स्ट स्ट्रोक पेंट करें कि ये भी एक पवित्र आत्मा है. तो धीरे धीरे जो हमारी पेंटिंग है हमारी कॉन्शियसनेस में वो चेंज होती जाएगी. इट्स अबाउट चेंजिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी. आई मेट समवन के जिनकी सिस्टर ने उनके साथ उनके ही बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे कर दिया था, एंड जस्ट टू यू नो टेक ओवर द होल बिजनेस उन्होंने, शी हैड गॉन टू ऑल काइंड ऑफ एक्सटेंट. जो एक ब्रदर एंड सिस्टर की रिलेशनशिप में या किसी भी दो लोगों के रिलेशनशिप में वॉज नॉट वेरी हेल्दी, वो एक पास्ट की बात थी. अब वो बहुत समय से पकड़ी हुई बात थी. एंड देन सडनली वन डे द सिस्टर कम्स एंड सेज आई एम सॉरी, लेकिन आई वॉन्ट कि जो हमारे बीच पहले था, कैन इट बी द सेम अगेन? अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था.

0: से एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने उनको अपनी कॉन्शियसनेस में कैसा क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट देयर, रिलेशनशिप इज
1: विदिन,
0: इज हियर। और जिन भी लोगों के साथ हमारा थोड़ा सा अनबन हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो साइलेंस में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर अपनी पेंटिंग को चेंज करने की कोशिश करें, उनको चेंज करने की कोशिश करें।
1: लेकिन बात ये होती है कि जब ऐसे प्रोग्राम में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं जितने दर्शक हमारे साथ हैं, या जब बात हो रही होती है, एक थर्ड पर्सन की तरह हम सोच पा रहे होते हैं, हमें ठीक लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही शाम को मेरा हस्बैंड फिर आएगा, मैं उसकी वो इमेज क्रिएट करनी है तो भूले जाऊंगी। वो जो एक कंटिन्यूस मेरा प्रोसेस उसके साथ चल रहा है, या बच्चा घर आएगा, या मदर इन लॉ से फिर इंटरेक्ट करूंगी, ये चीजें मैं भूल जाऊंगी, याद ही नहीं रहेंगी। वो फिर बाद में तब याद आती हैं जब तक मैं
0: प्रॉब्लम कर चुकी होती
1: हूँ, मैं वो कर चुकी होती हूँ, एंड देन इट सडनली स्ट्राइक्स मी कि ये मैंने क्या किया।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने कहा अवेयरनेस। एक अवेयरनेस से इस जीवन की यात्रा में चलना है। अभी जो आपने कहा, सो व्हाट इज हैपनिंग, पूरा वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया, और प्रोसेस खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने रॉन्ग बटन प्रेस कर दिए थे।
1: वो भी आप इसलिए रियलाइज हो रहे क्योंकि प्रोग्राम देखा था, कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम अच्छा लगा था, या मैं अपनी भी बात करूं, मुझे बात की थी, मुझे बात समझ में आई थी, लॉजिकल लगी थी, और फिर जब मैंने, और मुझे लगा था मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है, और इसीलिए जब वो सिचुएशन से मैं गुजर गई, हो गया वो, तब मुझे याद आया कि ओहो, वहां पे जो बात हुई थी वो ऐसी थी।
0: राइट, बट दैट ऑल्सो इज वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो, एटलीस्ट हम एक जर्नी पर शुरू हो चुके। अगेन वी आर सेइंग, डोंट एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम योर सेल्फ। आप ये नहीं सोचे कि हाँ आज सुन लिया, कल से पूरा चेंज 360 डिग्रीज, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देखो आज दिन तक हमने बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक्स या मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मोस्टली वहां जहां परिवर्तन की बात होती है, वो बाहर की बातें होती हैं, कि रिश्तों को अच्छा बनाना है, स्माइल व्हेन यू मीट, ग्रीट लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, तो इन बातों पर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आकर रूट पर टच करते हैं, कहते ये बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी होता है। अब हो सकता है मैं बाहर से आपको स्माइल तो दे दूं, बहुत अच्छी तरह से बात तो कर,
1: अंदर से अगर कड़वाहट है वो नहीं जा सकती।
0: तो वो जो बातें होती है ना, सिंपल सिंपल, वो करना बहुत इजी होता है, और कहते हैं हाँ ये बहुत इजी है, लेकिन जब ज्ञान की बातें यहाँ सुनते हैं तो लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट नहीं है, वो रूट है, वो रूट है। उस पर थोड़ा सा एक बार उस जर्नी पर चल पड़ेंगे अपने ऊपर काम करने में, यू विल एंजॉय द जर्नी।
1: नो, दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट, नो नो, लॉट ऑफ पीपल आउट अराउंड अस आर एंजॉयिंग।
0: या सो मोस्टली द एंजॉयमेंट इज ऑल्सो बिकॉज आई रियलाइज एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल, यू नो। अब मुझे एक रियल, अभी ये नहीं है कि मेरे सारे रिश्ते बहुत परफेक्ट हैं, नहीं नहीं, बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी, लेकिन ये समझ में आ गया है कि ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना ये मेरे हाथ में है। अब एक एक को लेते जाएं, और जैसे जैसे कर, एंड मोस्टली इट इज हियर ना, तो बहुत ज्यादा उनकी जरूरत ही नहीं है कि उनके साथ बैठकर बात करनी है, उनके साथ सॉर्ट आउट करना है। नो, इट इज हियर, आई हैव टू सॉर्ट इट आउट हियर, एंड दैट्स व्हाई परमात्मा शिव बाबा आकर वो तो इजिएस्ट मेथड बता देते हैं कि बॉडी कॉन्शियस से हटकर सोल कॉन्शियस देखो, क्योंकि दैट इज द फंडामेंटल। अगर मैंने आपको देख लिया कि उस दृष्टिकोण से प्योर सोल, उसके बाद कोई और लेबल
1: नहीं है, बिल्कुल
0: कोई और लेबल नहीं बचता। जैसे ही मैंने आपकी इमेज यहाँ ये क्रिएट की, one beautiful little point of light, now what will be the energy flow, then that means I'm not to remember anything of the past, koi aur baatein uske baad full stop ho jati hai, to rishta kaise banega, and that's why
1: rishta automatically hamara jo hai wo flow, sare resentment sab kuch khatam
0: ho jayega na, wo sara khatam ho jayega, to energy flow bahut high level ki ho jati hai, to isliye aaj hum koi ek rishta le, कोई भी एक जिसको हमने यहाँ जो पकड़ के रखा है, तो आज हम अपना कोई भी एक रिश्ता ले लें, एंड उस वो एक व्यक्ति ले लें जिनके साथ मुझे कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा अंदर, और फिर बैठकर डिटैच होकर, अटैच्ड नहीं, अपने आइडिया ऑफ राइट से अटैच होकर देखेंगे, तो फिर वो इमेज सारी गलत ही दिखाई देगी।
1: एक रिश्ता ये ले लें कि मेरा बॉस है जिसके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, लेकिन आई डोंट हैव अ चॉइस, वी टॉक्ड अबाउट चॉइसेस, आई डोंट

0: नहीं जो है रिसेशन है, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनका वो जो काम करने का, खास एक प्रोजेक्ट पे चलना है और उस प्रोजेक्ट से मैं एग्री नहीं करता, मुझे मालूम है कि वो काम नहीं हो पाएगा अगर हम उसी के उससे कर चलते हैं तो. लेकिन मैं मतलब आई हैव टू वर्क ऑन दैट.
1: आई हैव टू वर्क ऑन दैट. नाउ जहां हम बोलते हैं आई हैव नो चॉइस, तो ये तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पहली बात तो हमने उस दिन डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है वेयर आई डोंट हैव अ चॉइस. फिर भी अगर आप फील करते कि आई हैव नो चॉइस, बट यू स्टिल हैव वन चॉइस हाउ यू हैव टू फील. वो चॉइस तो कोई नहीं लेके जा सकता आपसे कि वो, जैसे आपने कहा कि वो जॉब मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन उस जॉब को करते हुए मुझे फील कैसा करना है.
0: डिप्रेस्ड फील करना है, यू नो ह्यूमिलेटेड फील करना है, इंसल्टेड फील करना है, या मतलब हेल्पलेस फील करना है, या पावरफुल फील करना.
1: वो चॉइस तो है ना, उस चॉइस को तो नहीं हैंड ओवर करना हमें किसी को. तो उस चॉइस को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं. नाउ लेट मी लुक एट व्हाट डू आई थिंक अबाउट माय बॉस. एंड यू नो वी कुड एक्चुअली डू दिस लिटिल एक्सरसाइज. दिस इट लुक्स वेरी यू नो सिंपल, लेकिन ये बहुत ईजी है कि हम उस व्यक्ति के दोनों साइड्स नोट डाउन करना शुरू करें.
0: वही छवि आती है जब अपने बॉस के बारे में.
1: तो लेकिन आप उसको एक आत्मा देखकर अब उसकी विशेषताएं. See again, let's not build relationships on labels. तो detached होकर उस आत्मा की विशेषताएं और भले कमजोरियां भी हैं जो आपको देखनी पड़ रही हैं, आप दोनों को निकालिए और फिर आपको दोनों निकलेंगे. ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा जिसको पास सिर्फ कमजोरियां हैं और विशेषताएं हैं नहीं. और फिर जो विशेषताओं की लिस्ट आपकी निकलती है, आप अपनी कॉन्शियसनेस में वो विशेषताओं को याद रखने का प्रयास कीजिए. यू नो फिर अगर एक नेगेटिव थॉट आती है, लेट्स से अ नेगेटिव थॉट के नहीं वो तो हमेशा मुझे इंसल्ट ही करते हैं, उसके साथ मैं एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है. जो भी है, नॉट फ्लैटरी, नॉट इल्यूजन, बट वट एवर इज द रियालिटी. क्योंकि हो सकता है कि मैं जब वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, आई हैव नॉट टेकन इट एट द राइट पर्सपेक्टिव. सो लेट मी लुक एट द पर्सन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. उनकी विशेषताएं और कमजोरियां दोनों निकालो, और जब भी कमजोरियों के थॉट्स मेरे मन में आते, मैं तुरंत वो मेरे पास विशेषताओं वाली लिस्ट रेडी रहनी चाहिए, ताकि मैं विशेषताओं वाली लिस्ट में एक काउंटर थॉट, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कटिंग अ थॉट विद अ थॉट. तो अगर मेरे पास एक थॉट आती है कि कनुप्रिया तो ऐसे ही है, तुरंत मेरे पास एक थॉट आनी चाहिए नहीं,
0: लेकिन वो ऐसी भी है,
1: लेकिन कनुप्रिया ऐसी भी है. सो आई एम चेंजिंग माई पिक्चर. इट विल नॉट हैपन इन वन मिनट. इट विल नॉट हैपन इन वन मिनट बिकॉज मैंने जो पहले आपकी पिक्चर बनाई हुई है वो बहुत सारे
0: स्ट्रांग है, वो
1: बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस
0: जस्टिफाइड लगती है, मुझे ठीक लगती है. आई फील आई एम राइट. आई डोंट फील लाइक चेंजिंग.
1: लेकिन फैक्ट ये है कि जहां मेरे आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहां उनमें कुछ लो फेजेस थे, तो उनमें कुछ हाई फेजेस भी तो थे. लेकिन मेरा दृष्टिकोण नेगेटिविटी को देखने की तरफ ज्यादा था, तो मैंने पिक्चर कौन से कलर से पेंट की हुई है, सारे नेगेटिव वाले. अब मैं क्या करने वाली हूँ, उस पिक्चर को धीरे धीरे धीरे धीरे, इट विल नॉट हैपन एक स्ट्रोक के साथ पेंटिंग नहीं चेंज होने वाली है ये, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो वाले इंसिडेंट्स निकालने वाले हूँ वेयर यू हैव बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव, एम्पावरिंग, पावरफुल, वट एवर क्वालिटी आई वॉन्ट टू टेक. और अब जब ये नेगेटिव मेरी कॉन्शियसनेस में आता, मैं इसको पॉजिटिव से रिप्लेस करती हूँ. और इसका सबसे ईजी तरीका है, अगर स्ट्रेट करना है, आत्मा है. ये सब उसके अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में प्योर सोल, बिकॉज दैट्स व्हाट गॉड हैज कम एंड टोल्ड अस, कि हर आत्मा जो आज इस सृष्टि रंगमंच पर है, सबसे पहले अपने ओरिजिनल रूप में कैसी है,
0: प्योर.
1: ये सब जो उस पर लग गए हैं, ये दाग है, व्हाइट साड़ी है, नॉलेज है, ओरिजिनल कलर व्हाइट. आज दो दिन ट्रेन में पहनकर चले जाए, नीचे उतरे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा दाग होगा. अब आप सामने से देखते हैं, अगर इल्यूजन में है तो आप उस दाग को ही उस साड़ी का हिस्सा समझ लेंगे, और फिर आपका परसेप्शन इसकी तरफ क्या होगा. लेकिन अगर ज्ञान है तो आपको समझ में आएगा, नहीं, एक्चुअल कलर व्हाइट है, ये तो सिर्फ ऊपर से लग. अब आपका परसेप्शन कैसा होगा, साड़ी तो वही है. लेकिन आपने अपने ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखा, तब आपका परसेप्शन क्या होगा, प्योर व्हाइट साड़ी है, थोड़ा सा लगा हुआ दाग है, यू विल लाइक द साड़ी. लेकिन अगर इल्यूजन की दृष्टि

0: देखा वो ये तो व्हाइट पे ब्राउन व्हाइट
1: जैसे हम देखे तो इसमें पूरा जो हमने काम किया हमें उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना है.
0: That's why they said relationship is here.
1: नहीं एंड सबसे बड़ी बात है हम जो इंटरेक्ट करने से को अवॉइड करते हैं तो हम एक्चुअली कर सकते हैं अवॉइड और हम तब तक अपने ऊपर काम करके रिलेशनशिप को इतना हार्मोनियस बना ले सकते हैं कि वहीं से वाइब्रेशन आने लग जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली हमें उनके सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा.
0: कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमें सिर्फ वो राइट एनर्जी क्रिएट करके वो राइट एनर्जी जेनरेट करके उनके प्रति ट्रांसमिट करनी पड़ेगी और इससे हर समय जब उनके प्रति सोचें तो याद रखें व्हाइट है प्योर व्हाइट है थोड़ा थोड़ा ऊपर से अक्वायर्ड संस्कार है बट आई एम गोइंग टू लुक एट व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ द सोल दैट्स प्योरिटी
1: एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट यू नो
0: दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर
1: यस
0: एंड दैट्स व्हाई बाबा स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप कि पहले अपने प्रति क्या दृष्टिकोण रखने हैं आई एम अ प्योर सोल द फर्स्ट रिलेशनशिप विद माई सेल्फ then relationship with you ki aap kaun hai pure soul
1: very true
0: now
1: very
0: the
1: true.
0: energy that will transmit towards you will be more positive
1: in fact we really need to work on our relationship also yes. relationship with ourselves you know abhi tak to humne baakiyon ke sath rishte ko dekha lekin apne sath ke rishte ko bhi dekhna bahut zaruri hai sachivani lekin aaj jo aapne bataya ki kis tarah se jo itni kadwahat ya thehrav या ठंडा रिलेशनशिप हो चुका है ठंडापन आ जाता है हम उस रिश्ते में गर्माहट नहीं महसूस करते हम उस रिश्ते में एक वो एनर्जी का फ्लो नहीं महसूस करते हम इतने इतने दूर दूर कटे हुए हैं उन्हें हम खुद ही रिवाइव कर सकते हैं और दूसरे की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं वी डोंट हैव टू वर्क ऑन आर रिलेशनशिप विद अदर्स यू नो इन्वॉल्विंग अदर्स वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन आर रिलेशनशिप विदाउट इन फैक्ट इन्वॉल्विंग एनी वन आर सेल्स ओनली वेरी ब्यूटिफुल थैंक यू सो मच कोई बात कोई सवाल आपके मन में उठता है इन बातों को लेकर जो आज हमने की है आपका हम स्वागत करते हैं कोई सजेशन है आपके पास तो आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क करें हमारे फोन नंबर है 0999-344-555 0999-344-666 0987-366-555 0999-744-555 हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org अब एक नहीं ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही लेकिन आने वाली कड़ियों में खुद के साथ कैसे रिश्ता हमने कायम करना है इस पर भी बात करेंगे आज जो हमने बात की है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अगले घंटी बजे उससे पहले हमें तैयार रहना है उस रिश्ते को एक नए नजर से देखने के लिए आपसे विदा लेते हैं ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, जीवन को जीने की कला हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं इस श्रृंखला में। आज बात करते हैं खाने की। आजकल एक बहुत जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट पर बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं कि यू आर वॉट यू ईट, आप वो हैं जो आप खा रहे होते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप उस पर ध्यान दें जो आप खा रहे हैं, या ये देखें कि आपको क्या खा रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं। आज इस पर बात करेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात खाने की करते हैं कि सारे आस्पेक्ट लिए, लेकिन आजकल जो बहुत फोकस भी किया जाता है कि खा क्या रहे हैं और खाने को कैसे, और इस कारण काफी सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या जो हम खा रहे हैं पूरे दिन में खाते हैं उसका, हमारी डाइट का, हमारे खाने का, हमारे थॉट्स पर, हमारी बॉडी पर तो पड़ता है असर, हमारे मन पर भी पड़ता है?
1: डेफिनेटली, मन पर उसकी इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि जो खाते हो उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस भी है। दो प्रकार के वाइब्रेशन, एक तो खाने में जो उस चीज में वाइब्रेशंस है वह भी है, और दूसरा जिस व्यक्ति ने वो भोजन बनाया है उसके भी वाइब्रेशन उसमें है। तो दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस आप ले रहे हो, अगर वो वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, जैसे खाने में लो एनर्जी है, तो आपको भी वह जो रियल एनर्जी है वह नहीं मिलेगी, बल न्यूट्रिएंट्स मिल गए। और दूसरा जो बनाने वाला व्यक्ति है उसने अगर निराशा में खाना बनाया है, ईर्ष्या में खाना बनाया है, तो उसी प्रकार के वाइब्रेशंस आपको भी मिलेगी और आप पर भी उसकी इफेक्ट होगी।
0: हम बनाने वाले को नहीं रोक पाते हैं कई बार। अब इस पर वाइब्रेशंस की जहां बात आती है, सर शिवानी, रियली नीड टू नो कि खाने पीने की चीजें जो मेरी बॉडी के साथ थी, यू नो, बॉडी को ताकत दे रही थी, या वो सारे विटामिन जो जो रिक्वायरमेंट थी वहां तक सीमित थी, अब वो मेरे माइंड को कैसे मतलब कैसे अफेक्ट कर रही है?
2: हम सबके जीवन में ये अनुभव है और हम सब ने इस डिफरेंस को देखा है कि आप एक पर्टिकुलर मील को लें, वही दाल रोटी सब्जी आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाएं, वही पर्टिकुलर मील आप घर में लेकिन एक माँ के हाथ से बना हुआ खाएं, और वही पर्टिकुलर मील आप किसी बहन के हाथ से खाएं जिसको आपने हायर किया हुआ, जो आपके घर में आती है, खाना बनाती है, लेकिन काम के लिए, पैसे के लिए वो खाना बनाती है, और वही खाना आप मंदिर या गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में खाएं। चारों में जो आपको भावना है, जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, वो डिफरेंट महसूस होगी, क्योंकि चारों को बनाते समय जो भावना है इट इज टोटली डिफरेंट। रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है इट्स फॉर प्रॉफिट, आप जितना खाएंगे जितनी बार लेंगे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, दे आर सर्विंग यू विद दैट इंटेंशन। मदर जो खाना बना रही है इट्स फुल ऑफ लव अटैचमेंट। जो मेड जो आपके घर काम करती है वो खाना बना रही है, आप उसको बोल दो एक चपाती और खानी है तो उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चलनी है, अभी एक और खानी है,
0: हाँ।
2: क्योंकि उसको पैसे तो उतने ही मिलने हैं, सी उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है अगर आप और लोगे, लेकिन उसके काम करना उसको ज्यादा पड़ रहा है। शी डजंट लाइक दैट एनर्जी, हर एनर्जी इज डिफरेंट। और इसी को आप गुरुद्वारे मंदिर में खाएं तो भावना ही अलग है कि भगवान के कार्य के लिए ये भोग बन रहा है, भगवान के बच्चे आकर ये खाना खाएंगे। चारों में फीलिंग एकदम डिफरेंट आती है, ओनली बिकॉज कॉन्शियसनेस ऑफ द वन हु वाज कुकिंग इज डिफरेंट इन ऑल फोर केसेस।
0: व्हाट वी फेल्ट, मतलब अभी तक जो ये था कि शायद हमारी भी तो भावना
2: वो तो है,
0: हम अगर
2: हमारी भी भावना, लेकिन बनाने वाले की भी भावना, देखो दो काम हो रहे हैं ना, बनाने वाले की भावना खाने के साथ और फिर स्वीकार करने की भावना खाना खाते टाइम, बोथ आर वर्किंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, द वन हु इज कुकिंग एंड देन आफ्टर दैट द वन हु इज ईटिंग। ये भी नहीं कि सिर्फ जो खाना बना रहा है उसने ध्यान दिया, जब हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना है। दोनों में बहुत अंतर, मतलब दोनों में वी विल फाइंड दैट द राइट कॉन्शियसनेस विल गिव द राइट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी।
1: कई बार आप देखेंगे कि खाने वाले को पता ही नहीं कि कहाँ बनाया गया है, तो ये प्रसाद है या घर से आया है या होटल से आया है, लेकिन वो व्यक्ति अगर सही स्टेट ऑफ माइंड में होगा तो कैच कर लेगा। मैंने स्वयं देखा है कि जब हम बहुत जगह पर जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, कईयों के घर में भी रहते हैं,

0: कई बार सेंटर्स पर रहते हैं तो बल बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, फिर भी वहाँ जाते ही लगता है कि यहाँ के वाइब्रेशन अच्छे नहीं है।
1: क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस होने के बाद कई बार खाना खाते खाते पता चल जाता है कि हैवीनेस है, नॉट द फूड इज हैवी बट द एनर्जी द फील के जिसने ये खाना बनाया है सम हैवीनेस अबाउट द फूड। और किसी के हाथ का भोजन खाते हुए आपको लगेगा ये बहुत प्यार से बनाया हुआ भोजन है, बहुत इमीडिएटली पता चलता है भोजन स्वीकार। टेस्टी की बात नहीं है, कौन सा खाना ज्यादा टेस्टी है ना, वो बातें नहीं है, इट्स द फील दैट यू विल गेट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फूड।
0: और स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ये सभी नहीं कैच कर पाएंगे। आमतौर पर जो लग रहा टेंशन में जी रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट है,
2: हम खा भी किस थॉट में रहे हैं, हमारे पास मतलब कभी ड्राइव करते हुए खा रहे हैं, कभी गुस्से में खा रहे हैं, कभी पढ़ते हुए खा रहे हैं, कुछ लिखते हुए, मुझे याद टेलीविजन देखते हुए, मुझे याद ही नहीं पड़ता कि नॉर्मल खाने के ऊपर फोकस करके खाया गया हो। लेकिन ये कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है डॉक्टर साहब जो बताती है कि जिस भाव से खाना बनाया गया है या खाया जा रहा है उसका आपके थॉट्स पर या आपकी बॉडी पर जो खाने का अपना प्रभाव है उससे फर्क पड़ता है?
0: एक तो जो रिसर्च हुई इस प्रकार की रिसर्च हुई है कि थॉट्स का प्रभाव खाने पर क्या होता है, प्लांट्स पर इसकी रिसर्च की गई कि एक प्रकार के सब प्लांट्स लिए गए, जो जमीन थी वह भी एक प्रकार की थी, पानी भी एक जैसा ही उनको दिया गया। उन्होंने ये देखा कि सिर्फ जो पानी देने वाला है वो प्लांट्स पर वह व्यक्ति डिफरेंट थे, कि कुछ तो क्रिमिनल्स को वह पानी वाटर करने के लिए दिया गया, दूसरा नॉर्मल लोगों को दिया गया, और तीसरा जो लोग बहुत भावुक थे ऐसे लोगों को वह प्लांट्स को वाटर करने के लिए पानी दिया गया। और फिर जब 4 मास के बाद उन्होंने देखा तो क्रिमिनल्स ने जिन प्लांट्स को पानी दिया था उनकी ग्रोथ सबसे कम थी। जो लोग भावुक थे, इमोशनल थे, उन्होंने जो वाटरिंग किया था उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, जो नॉर्मल थे वो बीच में थी। और उसका कंक्लूजन ये निकाला क्योंकि जो भावुक थे उन्होंने भावना से यहां तक पूछा भी कि ये क्या हमें करना है, क्यों कर आप प्रयोग कर रहे हैं, और बड़ी भावना से प्यार से पानी दिया इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ हुई। तो इससे सिद्ध होता है कि भी सचमुच जो हम अगर प्लांट्स पर हमारे थॉट्स की इफेक्ट हो रही है तो खाने की इफेक्ट होगी होगी।
2: ओके, तो मतलब अननोइंगली हम जब खाना बना रहे, इवन आज मदर्स को भी अगर आप देखते हैं तो कई बार बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं वो मदर्स।
1: दैट्स व्हाट कॉन्शियसनेस व्हाइल कुकिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। हम तो ध्यान रखते कि अगर राइट कॉन्शियसनेस नहीं है तो अभी भोजन नहीं बनाओ, बिकॉज मोर देन गुड यू विल डू डैमेज। हम सिर्फ फिजिकल पर आज दिन तक ध्यान दे रहे थे ना, कि
2: खाते हुए बना रहे होते,
1: परेशान, कभी गुस्सा, कभी थके हुए, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू कुक बट यू आर कुकिंग, तो इट्स अ वेरी यू नो अच्छी फीलिंग नहीं। और कई बार ये थॉट आती कब खत्म हो, जल्दी करूं मैं जाऊं उधर, इट्स नॉट द राइट एनर्जी वी आर गिविंग टू द फूड। तो जो भोजन वो खाएगा उसको भी वांटेड नहीं फील होगा, बिकॉज जो दे रहा है उसने कैसी फीलिंग से दिया, जल्दी करो खत्म करो बस खाओ मेरा हो जाए काम, नॉट द राइट कॉन्शियसनेस फॉर द फूड। इवन जैसे भाई साहब ने कहा गार्डन, कोई गार्डन में है जो उधर का मालिक है वो खुद उस गार्डन को पानी देता है, आप देखो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी अपने पौधों के साथ। एंड कोई है जिसमें माली है जो गार्डनर है, बस वो आ रहा है 15 मिनट पानी देके चला जा रहा है, यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन द गार्डन। आप माउंट आबू आए जहां की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि वहां बहुत मेडिटेशन होती है, ओवरऑल एनर्जी ही डिफरेंट है, और आप वहां के आकर गार्डन देखें, जो जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में, न्यू पीपल कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी कहते हैं यहां के गार्डन में कुछ अलग बात है। बिल्कुल, वो लॉजिकली नहीं मालूम है कि वो अलग बात क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन नेचर। तो ये तो बहुत सारा, अगर आप सिर्फ अवेयर होकर चलोगे ना आपको ये सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आप एक प्लांट को लो घर में, कई लोग ये करते हैं कि अपने प्लांट्स को बहुत प्यार से वाटर करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं कई बार, यू नो यू विल सी द ग्रोथ। एंड कोई है जो निग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, यू विल सी हाउ द ग्रोथ इज। तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंट हो रही है ना दोनों की, अब इसी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रो करते टाइम, चाहे वो कुक करते टाइम, बात तो एक ही हो गई ना सारी।
0: ग्रोथ पर इफेक्ट हो रही है तो कुकिंग की भी इफेक्ट होगी।
2: और वो खाना बना और वो हमने खाया। ओके,
0: और ये जो बात शिवानी बहन ने बताई मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व की थी। आज तो माउंट आबू में आप देखते थे बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन पहले पांडव भवन बहुत छोटा सा होता

0: रहा था, वो ओम शांति भवन भी नहीं था, तो वहां पर हम बम्बई से कुछ भाई बहनों को ले जाते थे, वहां तब भी योग शिविर चलती थी छोटे छोटे रूप में 50-100 लोगों के लिए, और तब बम्बई से बस लेकर के जाते थे। और जो वहां जो जा रहे हैं लोग, साधक को तो पता था कि हम कोई आश्रम में जा रहे, लेकिन वो ड्राइवर को पता नहीं होता था, वो तो हमने बस हायर की है। लेकिन जैसे वो पांडव भवन में पहुंचते थे, ड्राइवर भी कहते अरे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। तो यही सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं, वह भी उसे कैच कर पाता है कि यहाँ के वाइब्रेशन कितने अच्छे हैं।
1: तो ये बात तो रही कि अगर जो खाना हम खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका हमारे मन पर, मन से फिर थॉट्स पर,
2: सी ऑलवेज वी बीन टॉकिंग के थॉट्स एनर्जी है, वाइब्रेशन है, मैं जो थॉट क्रिएट करूंगी वो आपके लिए जाएगा। अब ऐसे ही मैं वो थॉट क्रिएट किया, आपको गया, अब मैं वो थॉट क्रिएट किया जब मैं खाना बना रही हूँ, एनर्जी तो है, फूड इज ऑल्सो एनर्जी, तो वो थॉट्स, वो एनर्जी खाने के साथ है। अब मैं आपको डायरेक्टली थॉट्स नहीं दे रही, लेकिन खाने, आई एम सर्विंग इट टू यू ऑन अ प्लेटर एक्चुअली, मैं अपने एंगर को, अपने स्ट्रेस को आपको प्लेट में बहुत सुंदर तरह से सजा कर दे रही हूँ, मैं अपनी ग्रीड को, इफ आई एम डूइंग इट फॉर अ कमर्शियल प्रोसेस, इसीलिए एक्चुअली कहा जाता है प्रॉफिट के लिए जहां खाना बन रहा हो तो कभी खाना नहीं खाना चाहिए, नेवर, बिकॉज उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस है इट इज वेरी डिफरेंट, तो नेवर, इट शुड बी वेर इट्स बीइंग कुक्ड विद लव एंड यू नो आपको खिलाना चाहते हैं, ना कि आपसे कुछ कमाना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफरेंट।
1: एक बात मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक जाए कि खाना जो है दैट इज मैटर,
2: नो फूड इज एनर्जी ना, लिविंग लिविंग लिविंग लिविंग थिंग है ना, प्लांट इज अ लिविंग थिंग, मैटर पे भी तो माइंड का असर होता है,
0: एनर्जी लेवल को मेजर भी किया गया है और उसमें देखा गया कि फ्रूट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है, सेकेंड इज स्प्राउट्स, थर्ड इज वेजिटेबल्स एंड फोर्थ इज रोटी चपाती दाल, उसमें काफी लो है
2: कुक्ड, कुक्ड में भी अब इसमें वेजिटेबल्स में भी, आप फर्स्ट डे देखो जब वो फ्रेश है, फिर आप उनको देखो दो दिन बाद, फिर आप उनको देखो चार दिन बाद, उसमें भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है।
1: ओके, तो एनर्जी इन व्हाट सेंस, जो डिफरेंट विटामिन प्रोटीन्स ये सब एनर्जी,
0: सूक्ष्म एनर्जी जो वास्तव में ऑरा के रूप में है, वो फ्रूट्स में स्प्राउट्स में मैक्सिमम है।
1: तो ये जो एस्पेक्ट पर हमने एक्चुअली वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हमने खाना कैसे खाना चाहिए, कैसा खाना हो, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हो, कितना प्रोटीन्स हो, उस पर तो पूरा फोकस किया है। अगर हम इस पर फोकस कर पाते हैं, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट,
2: नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट अवेयरनेस चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने माइंड पर अटेंशन रखना चाहती हूँ तो मुझे हर तरफ से अटेंशन रखना पड़ेगा ना, आई कांट डू दिस कि मैं अपना ध्यान रखू, मेरे को शांत रहना है, पीसफुल रहना है, फिर मैं जाकर गुस्से को कंज्यूम कर लू, एक कुछ डिश खाई और गुस्से की वाइब्रेशन कंज्यूम कर ली, तो मैंने जितनी मेहनत की थी उस पर फिर ये डैमेज हो जाएगा, फिर थोड़ा सा अटेंशन रखूं, वर्क करूं, फिर कोई और एनर्जी कंज्यूम कर लूं, फिर कहूं पता नहीं आज क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी अभी लंच में क्या खाया था, लंच में किसी का स्ट्रेस भी कंज्यूम किया था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही आज, लेकिन कंज्यूम क्या किया था, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम के चिंतन को मैंने अपने लंच के साथ कंज्यूम कर लिया था, इसीलिए नाउ दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई थिंकिंग ऑल्सो, आई वुडंट नो द एग्जैक्ट थॉट कि आपकी थॉट क्या चल रही है, वो मेरी थॉट हो जाएगी वो नहीं, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी विल बी दैट। आजकल जैसे किरलियन फोटोग्राफी करके एक टेक्निक है जिसमें आप जब फोटो खींचते हैं तो आपको बॉडी की पूरी एनर्जी लेवल दिखाई देती है, तो उसमें सिर्फ शेप वही होती है, बाकी कलर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, वही किरलियन फोटोग्राफी आप फूड और फ्रूट और कुक्ड फूड के सैम्पल्स की भी कर सकते हैं, और उसमें क्लियर नजर क्या आता है, आप नॉनवेज फूड है उसकी फोटोग्राफ लें, आप फ्रेश फ्रूट है उसकी फोटोग्राफ लें, आप उसी फ्रूट को चार दिन बाद लें उसकी फोटोग्राफ लें, क्लियर के जो नॉनवेज फूड है उसकी जो एनर्जी फील्ड आएगी इट विल बी वेरी डार्क इन कलर, डार्क ब्लू ग्रे दैट साइड, फ्रेश फ्रूट है लाइटर मतलब प्योरिटी है, वही फ्रूट स्टेल हो गया डार्कर साइड, तो इससे क्लियर दिखाई देता है दिस इज एनर्जी जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, थोड़े साल पहले जब इट वॉज अ डीप कोर बिलीफ सिस्टम कि जैसा अन्न वैसा मन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय सब कहते थे ये कि जैसा अन्न वैसा मन। आज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी से बात करो, देर वॉज नो कॉन्सेप्ट के बाहर से खरीद कर खाना खाया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज नॉट देयर, दिस इज ऑल इन द लास्ट 50-60 ईयर्स, क्योंकि उस पर बहुत ध्यान रखा जाता था कि खाना कौन बना रहा है और किस स्थिति में बना रहा है। सो दैट एनर्जी फील्ड अब वो साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, जो हमारी संस्कृति में पहले बताया जा रहा था, टूडे वी आर साइंटिफिकली गेटिंग द प्रूफ ऑफ दैट।
0: इनफैक्ट पानी के लिए भी जैसे बताते हैं ना, ये पहले के जमाने मेरे दादा ये कहानी सुनाते थे कि भी एक व्यक्ति जा रहा था तो उसने कहीं से पानी पिया, तो नॉर्मल विचार है, आगे गए दूसरे कुएं से पिया तो चोरी करने के विचार आए। उसको लगा ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसे विचार क्यों आ रहे। तो किसको पूछा कि ये कुआं किसने बनाया, तो उसने सचमुच कहा कि एक चोर था, उसमें फिर चेंजेस भले आए लेकिन उसने ये कुआं बनाया है। तो कहते हैं उससे हाँ मैंने इससे पानी पिया तो शायद मेरे मन में इस प्रकार के विचार आने लगे। और आज तो देखो ना वो रिसर्च भी जो जापान के साइंटिस्ट की रिसर्च, कईयों को इसके बारे में पता है कि वाटर के क्रिस्टल्स बना दिए गए और बस उस पर फर्क इतना ही था कि सिर्फ नाम अलग लिखा था कि भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बॉटल पर लिखा कि मैं तुम्हारे से नफरत करता हूँ, एक बॉटल पर मदर टेरेसा लिखा, एक पर हिटलर लिखा, और फिर उसके क्रिस्टल बना करके जिसे एमआरआई करते, जैसे स्पेशल उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी एमआरआई की गई तो देखा कि भाई जिस पर लिखा था आई हेट यू वहां वाइब्रेशंस दूर दूर जा रहे हैं, वो नजीक क्रिस्टल्स नजदीक में
2: क्रिस्टल बना ही नहीं ना, क्रिस्टल बनता ही नहीं है। एंड जो पीसफुल वाइब्रेशंस के एकदम क्लियर डिफाइंड शार्प क्रिस्टल्स बने हैं।
0: इन्होंने भी बहुत अच्छा उसका एक इंटरप्रिटेशन, हिटलर लिखा था उसमें वह अणु नजदीक आ रहे, कोशिश कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने यह कहा कि भल हिटलर बहुत खराब व्यक्ति था लेकिन कहते कोर जो उनका है ना अच्छा है, जो ब्रह्मा कुमारी में मानते हैं कि भी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी वो अच्छी है, भले एक्वायर्ड कुछ भी हो, तो ओरिजिनली वो अच्छा व्यक्ति था पर उसने बहुत बुरे काम किए। तो इस प्रकार से वाइब्रेशंस की क्रिस्टल्स पर कितने इफेक्ट होते हैं।
1: तो मतलब सिर्फ ये कहने से, सिर्फ ये लिख देने से ही, या जो भी आपने वाइब्रेशंस दिए, पानी अगर ऐसा क्रिएट कर रहा है, तो हम जो खा रहे हैं, इनफैक्ट भी हम बात नॉन वेजिटेरियन फूड की हुई, ये भी आजकल एक बहुत ज्यादा इस पर बात करते हैं लोग। सी इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वेजिटेरियन बने, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन का सबको पता चलता जा रहा है कि कितना भी अपने आप को हम समझाते हैं कि प्रोटीन लेवल चाहिए, बच्चों को देना चाहिए क्योंकि उससे जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो ठीक मिलती है ग्रोइंग एज में, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यू नो व्हाई वेजिटेरियन फूड इज बेटर देन नॉन वेजिटेरियन।
0: कई दृष्टि से अगर आप देखो, जैसे भी आपने बताया ना प्रोटीन की बात भी, इनफैक्ट दालों में जो प्रोटीन है वो एक से बहुत अच्छा है। सोयाबीन प्रोटीन इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। वास्तव में मिथ है कि भी नॉन वेज में ज्यादा प्रोटीन है, तो एक तो ये बात पर प्रोटीन की। साथ साथ में अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स को देखें कि आज जो सबसे जो नंबर वन किलर इज व्हाट, क्या है नंबर वन, हार्ट डिजीज। और हार्ट डिजीज क्यों हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो आज नॉन वेज में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और भी सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है कि जो सीधा जाके हार्ट की धमनियों में चिपकता है। तो इसके कारण ये एक सिंगल रीजन से भी हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए। और एक सूक्ष्म बात की जो आमतौर पर लोग नहीं समझते हैं कि जब प्राणी को मारा जाता है ना, आपके पीछे कोई गन लेके भागे तो क्या होगा, एक्सट्रीम फियर निर्माण होगा और उससे फिर वो टॉक्सिक केमिकल्स निर्माण होते।
1: अच्छा,
0: एड्रेनालिन,
1: क्योंकि वो सारा वो होगा ना, अब वो कौन सा सिंपैथेटिक,
0: सिंपैथेटिक
1: नर्वस सिस्टम जो है जी, तो वो जानवरों में भी वैसे ही होता है। एंड लास्ट ना उस टाइम आपने मार दिया, सिर्फ गन लेके भी नहीं, हम तो खींच के वो स्लॉटर हाउस में लेकर जा रहे हैं,
0: उनको पता भी मारने वाले केमिकल्स चल रहे,
2: टॉक्सिक थॉट्स जो गिरीश भाई ने बताया वो सारे केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं।
0: कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हाई लेवल में रिलीज होता है और वो जब आप मांस को पकाते हो तब भी वो खत्म नहीं होता।
1: अच्छा, तो वो रिटेन,
0: इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ये जो केमिकल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो आप उसको खा रहे हो, नहीं सोचो
1: माय गॉड ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि ये खाते हैं तो उनका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता है,
0: प्रोडक्शन उसकी इफेक्ट

0: होगी
1: क्योंकि ऐसे तो खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल इफेक्ट आपके बॉडी पर भी होगी.
2: लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स
1: इंक्रीज एंड नो देन दैट हार्मफुल इफेक्ट विल इंक्रीज
3: एंड एनर्जी भी कौन सी कंज्यूम की, फियर और एंग्जाइटी की. तो अब आप डिसाइड करो, आप बोल रहे हो ना छोड़ने में मुश्किल लगता, तो प्रोटीन्स है, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज प्रोटीन्स प्लस फियर एंड एंग्जाइटी.
2: And now, then so many
3: how do I want to eat? This is that non-veg dish. It is proteins plus fear and anxiety. And yahan hamara dal, paneer, sprouts. This is proteins minus fear and anxiety. Now choose. It's open. You know, everyone has the right to choose. Lekin ek bar aapne choice ki hai ki main fear aur anxiety ko aur ye sab hormones ko consume karne wala hu. फिर नहीं अपने आप को कहें कि मैं क्यों परेशान रहता हूँ, मुझे क्यों छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है. मैंने कंज्यूम किया है उसको और मैं कंज्यूम कर रहा हूँ एवरीडे, तो क्यों नहीं आएगा. बचना चाहता हूँ कोई बात नहीं, फिर छोड़ू. ट्राई तो करें, एक्सपेरिमेंट तो करके देखे ना. हर रोज वही कंज्यूम कर रहे हैं, फिजिकली भी डैमेज, यू नो. फियर कंज्यूम करना, हम किसी के फियर को कंज्यूम कर रहे हैं. व्हाट मस्ट बी द लेवल ऑफ फियर व्हेन समवन इज गोइंग टू बी स्लॉटर्ड. You just have to think कि मेरे अंदर किस तरह की thoughts चलेंगे if I was going to be slaughtered just now. That is what I'm consuming.
2: तो वो जो actually अगर हम देखें भी कि कोई डरा हुआ या गुस्से में होता है व्यक्ति या घबराहट में होता है, हम उसके साथ होते हैं, हम उसकी घबराहट का हिस्सा बनते
1: हैं.
3: आपको फील नहीं होता
2: क्या है ना एकदम से डर भाई, अगर आप फियर के माहौल में हैं, आपको खुद फियर हो, यू स्टार्ट गेटिंग अफ्रेड यू नो.
1: एग्जाम में होता है ना, एग्जाम सबने, एक बच्चा डरा हुआ है सारे डर जाते हैं. और देखो दो इम्पोर्टेंट रीजन है, एक तो कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, क्या उसमें डीजल डालेंगे? नहीं डालेंगे, कोई कहे भी
3: नहीं सकता,
1: खराब भी हो जाएगी. तो ऐसे ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी गाड़ी है वो किसके लिए बनी है, नॉनवेज के लिए बनी है या वेजिटेरियन डाइट के लिए बनी है. और अगर आप एनिमल किंगडम में देखो, ह्यूमन बीइंग तो सबसे अडॉप्ट हो गए एनिमल किंगडम में, वेजिटेरियन एनिमल भी है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है. अगर आप देखेंगे कि जो वेजिटेरियन एनिमल है उनकी पूरी सिस्टम
2: हर्बीवोरस
1: और हमारी सिस्टम, हाँ हर्बीवोरस एनिमल, वो एग्जैक्टली सेम है.
2: अच्छा,
1: एक वेजिटेरियन एनिमल्स जो है उनके कनाइंस जो है वो बहुत बड़े नहीं है, चीर फाड़ करने के बड़े दांत नहीं है. हमारे भी कनाइंस बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं. ऐसे जो मुंह में सलाइवा होता है वो नॉन वेजिटेरियन एनिमल का हाईली एसिडिक है. हमारा सलाइवा है वो अल्कलाइन है. हमारे स्टमक में भी जो एसिड है वो बहुत कम है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल के स्टमक में बहुत मात्रा में एसिड होता है. ऐसी एक मेन डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो कितने बड़े हैं पता है ना, अवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर 22 फीट लॉन्ग, वो कॉइल के रूप में पेट में पड़े हैं. जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सिर्फ 6 फुट लंबे. क्योंकि पहले से कुदरत को पता था कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल इसमें फाइबर नहीं होना है तो वह धीरे धीरे पास होगा, तो इसके लिए वो 6 फीट के बनाए. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बनाए 22 फीट के, क्योंकि पता था कि बहुत सारा फाइबर कंज्यूम करेगा, वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करेगा, तो वह फिर स्लोली जाएगा और उसको 24 घंटे लगेंगे बाहर आने में. और भी कुछ अगर हम चीजें देखें कि बाइल का प्रोडक्शन, लीवर जो बाइल सिक्रिट करता है, हमारे में बाइल की मात्रा कम है क्योंकि हम फैट कम कंज्यूम करने वाले हैं. नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत ज्यादा फैट है, तो इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल है उनका बाइल का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी मात्रा में बाइल को चाहिए. तो ये सारी सिस्टम को ही देखो, हमारी सिस्टम वेजिटेरियन एनिमल्स की तरह. और दो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है ना वो जीभ से पानी पीते हैं.
2: अच्छा.
1: हम जीभ से, हम तो मुंह से पीते, वेजिटेरियन एनिमल ही मुंह से पानी पीते. और भी एक डिफरेंस है कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उनको जो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ना, अब एक कुत्ते को देखना से करेगा जब उसको टेम्परेचर को डाउन लाना है, लेकिन हमारे में वो सिस्टम ही है कि ऑटोमेटिक हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगता है. दैट इज देयर ओनली इन वेजिटेरियन एनिमल्स. तो अवर होल सिस्टम इज सच, उसको भी कोई समझ ले तो चेंज हो जाए.
2: इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह की आज हमने वही बार बार हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस, कि पता चला है, क्योंकि अभी तक शायद

सब बोलते थे कि वेजिटेरियन होना चाहिए या खाना जो है वो सही और जैसा कि अन्न का मन पर असर है, सुनते आए थे समझ नहीं पा रहे थे और ये सोचते थे कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर हम खाना बना नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी इंक्लिनेशन नहीं है और हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे को इतना फर्क डाल रहा है। अच्छा खाना खाने को जो हेल्दी सपोजिटली खाना है उसके ऊपर हमने फोकस शुरू किया अगेन बिकॉज हमें लगा कि वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन आज जब हम थॉट बार बार हम कह रहे हैं सोच समझ के सोचना है, अगर उस पर ये सारी चीजें इतना असर डाल रही हैं, थैंक यू सो मच। सोल्यूशन हमारे सामने है, आज अवेयरनेस है, आज ज्ञान है, आज समझ में आ रहा है कि अभी तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि हम खा क्या रहे हैं। हमने बहुत बार सोचा कि राइट डाइट, उतना विटामिन्स खाने हैं, उतने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, बच्चों के लिए भी हम फिक्स कर रहे थे, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर इस पर फोकस करना है तो खाना बनाते वक्त और खाते वक्त हम क्या सोच रहे हैं उसका हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर भी बहुत असर पड़ रहा है। और खासकर अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच कोई कश्मकश थी, आज समझने की जरूरत है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और जैसा कि शुरू में कहा था कि हम क्या खा रहे हैं उससे हम बनते हैं, या हमें क्या खा रहा है हमें ये भी सोचना है। तो बॉल हमारे कोर्ट में है, हमने देखना है कि कैसे आगे खेलेंगे। कोई बात मन में है, कोई विचार है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें ईमेल करें या फिर फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद रमा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं, कहीं ये फल और फूल उगाए केसर कर...

की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

फर्क और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगी, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा, हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: वारिस मोहम्मद खान भोपाल रियासत के बागी नवाब थे। वे सन 1842 के बुंदेला विद्रोह और फिर 1857 के इंदौर

विद्रोह में अपनी कारगुजारियों के लिए जाने जाते हैं। सन 1944 में जब भोपाल रियासत के नवाब जहांगीर मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद अंग्रेजों ने सिकंदर बेगम को गद्दी पर बिठा दिया। इस घटना से मरहूम नवाब के वंशज असंतुष्ट हो गए। वारिस मोहम्मद खान भी उनमें से एक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने सिकंदर बेगम के रूप में अपनी कठपुतली को बिठाया था, जिसके तार वो जब और जैसे चाहे खींच सकते थे। वारिस खान ने जब अपनी नाराजगी का इजहार किया, तो सिकंदर बेगम ने उन्हें बुंदेला बगावत में अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम करने के जुर्म में गिरफ्तार करके रियासत बदर कर दिया और शासकीय कैदी के रूप में सीहोर के पॉलिटिकल एजेंट के सुपुर्द कर दिया। इत्तेफाकन पॉलिटिकल एजेंट के मार्फत वारिस की मुलाकात क्रांतिकारी सादत खान से हो गई और उन्हें मालूम हुआ कि मध्य भारत में भी उत्तर भारत की ही तरह अंग्रेजों की खिलाफत के लिए बगावत का माहौल पनप रहा है। वारिस मोहम्मद खान ने भोपाल कंटिंजेंट के सिपाहियों को बगावत में शामिल करने की जिम्मेदारी ली और 500 सैनिकों के साथ सादत खान के साथ दिल्ली की ओर निकल पड़े। विद्रोही सेना धौलपुर से चलकर आगरा के पास पहुंची कि 10 अक्टूबर को कर्नल ग्रेट हेड की सेना ने उसे घेर लिया। घमासान युद्ध में 1500 इनकलाबी सैनिक मारे गए। वारिस भी दिल्ली की ओर गए, मगर हालात खराब देखकर वापस लौट आए। 6 नवंबर 1857 को करौली के पास उनकी मृत्यु हो गई।

0: दादा अपनी नई कार देगी, नई कार?
1: हाँ देख रहे हैं बेटा, काफी महंगी दिखाई दे रही है। वो काफी बड़ी भी है।
0: अब दादा बड़ी है तो महंगी भी होगी, 18 लाख की है, 18 लाख की।
1: अच्छा अच्छा अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय भिजवाता हूँ।
2: वाओ यार, नई कार, क्या बात है यार, कब उठाई?
0: अरे दशहरे पर पापा ने बर्थडे में दिए।
2: बहुत सुंदर मॉडल है।
0: अरे सुंदर तो है ही, और इसके फंक्शन देखेगा तो दम रह जाएगा दम।
3: तेरे तो ऐश हो गए यार।
4: ऐश क्या हो गए, बाप की दौलत पर इतरा रहा है। बेटा 4 पैसे अपनी मेहनत से कमाओ तो आटा दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा।
2: जैसे कि तू कमा रहा है। अबे मेरा मुंह मत खुलवा।
0: अब भैया मैं चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हूँ तो भैया तो मेरा क्या दोष है? फिर दुनिया में कुछ लोग काम करने, दौलत कमाने और नाम करने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ लोग दौलत लुटाने के लिए और ऐश करने के लिए।
5: मुंह में चांदी का चम्मच लेकर तो नेहरू जी भी पैदा हुए थे, पर उनने तो ऐसा नहीं सोचा।
0: अब उनने क्यों नहीं सोचा ये मैं क्या जानू यार, अपना तो एक ही फंडा है, मस्त रहो और मस्ती करो और सीरियस बातों को धुएं में उड़ाते रहो।
2: धुएं में उड़ा दो या धुएं के साथ पी लो। दुनिया को भूलकर सातवें आसमान की सैर करो।
4: ऐसे ही जैसे तूने सातवें आसमान में उड़ते हुए जमीन पर चलते आदमी को अपनी स्पीड से हवा में उड़ा दिया था। है
2: देख यार, वो तो सरासर उसकी गलती थी, सड़क को लॉन समझ के टहल रहा था वो।
4: बेटा सब पता चल जाता किसकी गलती थी जब पुलिस के बैद खाने पड़ते।
2: अरे छोड़ यार, अरे किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है जो अपन लोगों को हाथ लगा सके?
4: बेटा वो तो पिताजी की पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम लोग, नहीं तो अब तक कितनी बार शाही मेहमान खाने की सैर कर चुके होते हैं।
0: अरे तुम लोग ये क्या फंडा लेके बैठ गए यार, लेट अस सेलिब्रेट।
1: दादा एनएमसी डबल कर देना, डबल।
2: दादा समझे, एनएमसी याने नमकीन मीठा चाय। और हाँ दादा, वो अपना प्रिय वंदे मातरम गीत भी लगा देना।
1: अरे बेटा आज तो लगता है सूरज पूरब से ही उगा है।

0: लोगों को देश प्रेम के गीत और कहानी सुनने का चस्का लग गया।
1: ये बात तो है दादा,
2: सही कह रहे हो दादा।
0: आज हम तुम्हें भोपाल के वारिस मोहम्मद खां की कहानी सुनाते हैं। नवाब होते हुए भी उन्होंने रियासत की सुख सुविधा सभी छोड़ के देश की आजादी के लिए कई तरह के संकट झेले।
3: संकट? कैसे संकट दादा?
0: जो सन 1842 के बुंदेला विद्रोह और फिर 1857 के इंदौर विद्रोह में अपनी विद्रोही कारगुजारियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। बात सन 1842 की है। भोपाल रियासत में नवाब जहांगीर मोहम्मद खां का राज था।
3: आदिल मियां
4: जी,
3: ये सागर नर्मदा इलाके में अब हालात कैसे हैं?
4: नवाब हुजूर, हालात तो कतई ठीक नहीं है।
3: अरे,
4: पूरे सागर नर्मदा इलाके में बगावत की चिंगारी तेजी से फैलती जा रही है।
3: समझ में नहीं आता बात कहां से कहां पलटी खा रही है। अरे, मामला था अदालत की डिग्री से बेदखली का, अब देखो इसे किस तरह से सियासत रंगत दी जा रही है।
4: जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। अब जमींदारों द्वारा राजस्व की रकम अदा नहीं की जाएगी तो अदालती कार्यवाही तो लाजमी है ही, पर लोगों ने इसे बरतानिया सरकार से बगावत का मुद्दा बना लिया है।
3: पर मामला तो सागर के उत्तरी इलाके के जमींदार मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला का था ना?
4: जी हाँ, पर अब तो गौड़, लोधी और बुंदेला राजपूतों सहित सभी ठाकुर बगावत पर उतारू हैं। और शायद आपको पता होगा,
3: क्या
4: अपने वारिस मोहम्मद भाईजान भी हीरापुर के हृदय शाह के साथ इस बुंदेला बगावत में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं।
3: अरे, वारिस तो शुरू से ही बगावती ख्याल का लड़का रहा है, पर तुम अपने भाईजान को आगाह कर दो कि बरतानी सरकार के खिलाफत के झगड़े से दूर ही रहे, क्योंकि यह उसकी सेहत के खिलाफ जा सकता है।
4: जी,
3: फिर हमारी रियासत बरतानी सरकार की वफादार रियासतों में से एक है।
4: अब आपको क्या बताएं, राजा हृदय शाह के साथ भाईजान उधर के सभी ठाकुरों से मुलाकातें कर रहे हैं।
3: ये ठीक नहीं है।
4: और उन्हें मिलाकर बरतानी सरकार के खिलाफ बगावत के लिए तैयार कर रहे हैं। सारा सागर नर्मदा इलाका बगावत की आग में जल रहा है। पुलिस चौकियां लूटी जा रही हैं। खुरई, नदियावली, धामोनी आदि शहरों में लूटपाट के समाचार हैं।
3: भाई, जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक नहीं है।
4: अब क्या किया जा सकता है?
3: खुदा खैर करे, हमें भी मुस्तैद रहना होगा।
4: जी,
3: कहीं ये आग इधर न फैले।
0: पूरे एक वर्ष तक सागर नर्मदा क्षेत्र उपद्रवग्रस्त बना रहा।
3: अच्छा,
0: आखिर 1843 में कैप्टन वेकमैन ये विद्रोह दबाने में सफल रहा। विद्रोहियों की धर पकड़ कर उन्हें मौत के घाट उतारा जाने लगा। मधुकर शाह और राजा हृदय शाह भी मारे गए। विद्रोही इधर उधर बिखर कर चले गए। नवाब वारिस मोहम्मद भी भोपाल लौट आए। इसके बाद भोपाल रियासत में हालात तेजी से बदले। सन 1844 में रियासत के नवाब जहांगीर मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी सिकंदर बेगम को गद्दी पर बैठा दिया गया। इस घटना ने मरहूम नवाब जहांगीर मोहम्मद खां के वंशजों में असंतोष की लहर फैला दी।
4: वारिस भाईजान, जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ।
3: होना तो ये था, खानदान के नवाबों में से किसी को गद्दी नशीन किया जाता।
4: जी,
3: पर ये होता कैसे? बरतानिया सरकार को तो रबर स्टाम्प चाहिए था जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके, उनकी मर्जी मुताबिक काम कर सके।
4: तो इसके लिए उन्हें बेगम हुजूरी मिली थी।
3: उनसे अच्छा रबर स्टाम्प और कौन हो सकता था वादिल?
4: सच तो यह है भाईजान, ये सब बेगम हुजूर की ही चाल थी। वो नहीं चाहती थी कि रियासत की गद्दी पर हम में से कोई बैठे।
3: जी हाँ, बड़ी सफाई से पॉलिटिकल एजेंट को अपनी ओर करके उन्हें कंपनी सरकार से अपनी ताजपोशी का फरमान जारी करा लिया।
4: बेगम हुजूर राज चला पाएंगी क्या?
3: वो तो आगे पता चलेगा। आप लोग भले चुप रहे पर हम चुप बैठने वालों में नहीं है।
4: तो किया भी क्या जा सकता है।
5: नवाब साहब, नवाब साहब, आप दोनों को बेगम साहिबा ने दीवाने खास में तलब किया है।

0: हम ये क्या सुन रहे हैं? आप लोग हमारी ताज पोशी से खुश नहीं हैं?
1: कैसी बात कर रही है बेगम हुजूर? लगता है हुजूर को कोई गलत फहमी हुई है। ये तो हमारे लिए निहायत फख्र की बात है कि आप रियासत की गद्दी की इज्जत अफजाई कर रही हैं।
2: ये सब झूठ बोल रहे हैं बेगम हुजूर। रियासत की गद्दी पर आपकी ताजपोशी से मरहूम नवाब जहांगीर मोहम्मद खान साहब के खानदान के हम सभी नवाब बेहद गमजदा हैं, क्योंकि हम में से हर एक ये चाहता था कि खानदान के ही किसी नवाब को ये गद्दी मिले।
0: वारिस, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी बातें बेगम हुजूर की शान में गुस्ताखी की हदें पार कर रही हैं।
2: बेगम हुजूर, सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती हैं।
0: चुप हो जाओ बदतमीज। हम जानते हैं बगावत की तेवर तुम्हारी आदत बन गए हैं, पर ये मत भूलो बेअदबी की भी एक हद होती है। हम तुम्हें ये हद पार करने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे। तुम्हें समझना होगा, रियासत की मालकिन बेगम हुजूर से बात करने का एक खलीफा होता है।
2: यदि बेगम हुजूर की चापलूसी करना, उनकी हर सही गलत बात को अल्लाह का फरमान समझकर मान लेना और उनके सजदे में बिछ जाना अदब और सलीका है, तो हम ऐसे अदब कायदे को तौबा करते हैं।
0: बदतमीज, तुमने हमारी भलमन साहब और मेहरबानियों को अपना हक समझ लिया, तो ये तुम्हारी गलती है। हम जानते हैं और कंपनी सरकार भी जानती है कि बुंदेला बगावत में तुमने अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम किया है। ये तुम्हारी जागीर छीनने और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए काफी है।
2: बेगम हुजूर से यही उम्मीद थी, पर आप भी जान लें बेगम हुजूर, कंपनी सरकार की वफादार बनकर भी आप अपनी गद्दी ज्यादा दिनों तक बचा नहीं पाएंगी।
0: खामोश बदतमीज, है कोई? गिरफ्तार कर लो इस नमक हराम को।
3: तो दादा, क्या वारिस मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया?
4: हाँ, वारिस मोहम्मद खान को गिरफ्तार करके रियासत बदर कर दिया गया। उसे शासकीय बंदी के रूप में सीहोर के पॉलिटिकल एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेज दी गई।

0: अरे हम तो नाहक ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो बगावत के अंजाम की अच्छी खासी तैयारी है। इधर सआदत खान साहब इंदौर के रिसाले को संभाले हुए हैं
1: जी,
0: और उधर हम भोपाल कंटिजेंट के सिपाहियों से लगातार खतो किताबत बनाए हुए हैं। अब तो अपनी तैयारियों को सही प्लानिंग से अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है
1: जी। चलिए, आपसे सही समय पर मुलाकात हुई, इंशाल्लाह हमारे मंसूबे जरूर कामयाब होंगे।
2: 1857 का महासमर, 10 मई को विद्रोह की जो आग मेरठ से उठी, जल्दी ही पूरे उत्तरी भारत में फैलती हुई भारत के मध्य भाग में भी जा पहुंची। इंदौर में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के हृदय में भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। विद्रोह के बाद कई दिनों तक अंग्रेज अधिकारी उन भयानक दृश्यों को याद करके सिहरते रहते थे।
3: इतनी बड़ी बगावत का षड्यंत्र तुम्हारे नाक के नीचे चल जा रहा और तुमको पता नहीं चला।
4: बट योर एक्सेलेंसी, किसने सोचा था हमारे से हेल्प के लिए आया होलकर का फोर्स भी बगावत में शामिल होगा?
3: बगावत का शुरुआत तो उसी से हुआ, उनका लीडर सआदत खां ही तो था, होलकर रिसाले का असर।
4: यस, सआदत खां तो था ही, पर असली बागी नवाब वारिस मोहम्मद खां है। जब से वो मांडलेश्वर से इंदौर आया था, ग्रुप बनाकर लोगों को बगावत के लिए रेडी कर रहा था। इंदौर बगावत को उकसाने बढ़ाने में वारिस मोहम्मद का ही हाथ था। रियली बड़ा भयानक प्रोपेगंडा किया था उसने।
3: एग्जैक्टली, कुछ देर में 3 ऑफिसर्स मारे गए, कर्नल प्लाच, कर्नल फेगन और मेजर हैरिस। बाकी ऑफिसर्स ने खिले में छिपकर जान बचाई। रेजिमेंट के भोजनालय और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई। रात भर लूटपाट होती रही।
4: ओ नो, इधर दिन भर इंदौर लुटता रहा। रेसिडेंसी की टेलीग्राफ लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस के अंग्रेज ऑफिसर्स को मार डाला गया। और योर एक्सलेंसी, पूरी रेसिडेंसी और आसपास के एरिया में अंग्रेजों को पकड़ पकड़ कर मार डाला गया।
2: नवाब वारिस मोहम्मद खां के मंसूबों की खबर जल्द ही बेगम सिकंदर जहां के पास पहुंच गई। फिर बादशाह बहादुर शाह जफर का सभी महाराजाओं और नवाबों के नाम लंबा संदेश और अपील और साथ ही झांसी की रानी के पत्र ने बेगम की आंखों की नींद उड़ा दी।
5: बेगम हुजूर, ग्राम तरदरा सीहोर का जागीरदार वारिस मोहम्मद खां बगावतियों के साथ मिलकर भोपाल रियासत को हथियाने का ख्वाब देख रहा है।
6: तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली?
5: इंदौर जो कंटिजेंट भेजा गया था उसके 12 सिपाही भोपाल लौटे हैं।
6: सिर्फ 12 सिपाही? बाकी का क्या हुआ?
5: बाकी सभी बागियों के साथ दिल्ली कूच कर गए हैं।
6: लौटने वाले सिपाही क्या खबर लाए हैं?
5: कहते हैं वारिस मोहम्मद की नीयत बुरी हो गई है, रियासत हथियाने वास्ते इंदौर मऊ के विद्रोहियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगा हुआ है।
6: देखो, तुम एक खत वारिस मोहम्मद की माँ को लिखो
5: जी,
6: कि उसका बेटा भोपाल राज्य के खिलाफ कार्यों में लगा है
5: जी,
6: उसके साथ उसका सिकंदर मोहम्मद और उसका दामाद भी ऐसी हरकतें कर रहा है, उन्हें इन बुरे कामों से दूर रखें
5: जी।
6: इसी तरह दूसरा खत उसके भाई सिकंदर मोहम्मद को लिखो कि वो अपने भाई को समझाए कि अभी भी जीवन गुजारे के लिए उसे भोपाल सरकार से इमदाद दी जा रही है। यदि वो चाहता है कि ये इमदाद जारी रहे तो उसको अपनी हरकतों से बाज आना होगा।
5: आपके हुक्म की तामील होगी, पर बेगम हुजूर, आपको याद होगा 3 सितंबर 1875 को बानपुरा जिला बेगमगंज के जागीरदार ठाकुर मर्दन सिंह ने बादशाह बहादुर शाह जफर का एक संदेश हमें भिजवाया था, जिसने फिरंगियों को इस देश से बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद की अपील की थी।
6: हाँ, हमें याद है, वो खत तो हमने होशंगाबाद में रुके पॉलिटिकल एजेंट को भिजवा दिया था।
5: जी हाँ, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फिर ऐसी ही अपील आई थी, जिसने फिरंगियों को भारत से निकालने की, जंग में लड़ रहे सिपाहियों को रियासत भोपाल की ओर से अंग्रेजों को मदद न देने की बात कही गई थी।
6: उसका भी तो हमने रानी को जवाब

0: दिया था कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है।
1: जी हाँ, उसके बाद झांसी की रानी ने फिर से वही संदेश भेजकर अपनी अपील पर फिर से गौर फरमाने की बात कही थी।
0: उसका भी तो हमने जवाब दे दिया था कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
1: जी हाँ, पर अब रानी ने गुस्से में ये खत भेजा है।
0: क्या लिखा है इसमें?
1: लिखा है, मैं शीघ्र ही अपनी हाल की मुहिम को पूरा करके भोपाल आऊंगी और अपनी तलवार की नोक पर आपको अंग्रेजों की मदद करने से रोक दूंगी।
0: उनकी ये मजाल, इसका जवाब लिखो कि रियासत भोपाल को ये गौरव प्राप्त है कि वो हमेशा सल्तनत बरतानिया की वफादारी में सक्रिय और आगे से आगे रही है और आगे भी वे अंग्रेजों की वफादार रहेगी।
1: जी,
0: अगर आप भोपाल आना चाहती हैं तो जब आपका दिल चाहे यहाँ आइए। हमारा आतिशी तोपखाना आपका मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार है।
1: आपके हुक्म की तामील होगी बेगम हुजूर।
2: उधर वारिस मोहम्मद खान की विद्रोह सेना आगरा के पास पहुंची थी कि 10 अक्टूबर को कर्नल ग्रेट हेट की सेना ने उसे घेर लिया। घमासान युक्त हुआ।

0: डेढ़ हजार से अधिक विद्रोही मारे गए, 10 लाख से अधिक का बाप छिन गया, बचे विद्रोही इधर उधर बिखर गए। वारिस मोहम्मद खां कुछ साथियों के साथ दिल्ली की ओर गया भी, पर हालात खराब होने के कारण वापसी के समय 6 नवंबर 1857 को करौली के पास उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले 3 नवंबर को उसकी जागीर की जब्ती के आदेश भी निकल चुके थे। तो बेटा, ये थी भोपाल के नवाब वारिस मोहम्मद खां के बलिदान की कहानी।
1: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: नमस्कार अँड वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांती.
1: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
2: थैंक यू.
1: लास्ट टाइम बहुत सुंदर बात कही आपने कि मैंने आपसे पूछा था एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, लेकिन जैसे एक पॉइंट बड़ा अच्छा मिला हमको कि मन एक समय पे सिर्फ एक बात सोच सकता है, उसी तरह हमारी भी एनर्जी उस वक्त जब मैं गुस्से में हूं तो सिर्फ गुस्से किए.
2: एब्सोल्युटली.
1: तब मेरे समझ में आए कि ब्लॉकिंग योर एनर्जी क्या है. मेरा प्रॉब्लम है एनर्जी ब्लॉक हो गई, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद में सोचने बैठ जाता हूं.
2: नो प्रॉब्लम.
1: तो फिर मैं अपने आप को कोसता हूं, अपने आप को बोलता हूं, अपने आप को बुरा बोलता हूं, दूसरी एनर्जी शुरू होती है, डिप्रेशन में आ जाता हूं.
2: जब भी सारा दिन में हम वो वाले इमोशन क्रिएट करते जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली नाउ सपोज वी टॉकिंग अबाउट एंगर. अगर हम, क्योंकि गुस्सा हमें से मेजोरिटी को आ ही जाता है कभी ना कभी, जैसे आपने कहा कि

0: आने के बाद, करने के बाद, सब होने के बाद रियलाइज होता है, तब फिर क्या करें? फिर आपने कहा कि फिर मैं अपने आप को
1: कोसता
0: हूँ और फिर गिल्ट में चला जाता हूँ. दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी.
1: और श्राप भी देता हूँ अपने आप को कि मैं जिंदगी में नहीं सुधर सकता, इस जीवन मेरा विकार है.
0: सी, हमने उस दिन भी पढ़ा था और डिस्कस किया, आर थॉट्स एंड वर्ड्स आर वाइब्रेशंस विच आर रेडिएटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. इफ द थॉट्स एंड वर्ड्स यू क्रिएटेड यस्टरडे यू नो वुड बिकम अ रियलिटी, वुड यू से देम अगेन टुडे? हमारी सोच, हमारी बोल रियलिटी बनने वाली है.
1: मैं नहीं चाहता ये रियलिटी बने.
0: तो क्या था उस दिन कि अगर आपको ये समझ आ जाता है, दैट इज व्हाट दोस ब्यूटीफुल कोटेशन सेड, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि आपकी सोच और बोल रियलिटी बनती है, तो क्या आप वही सोचेंगे और बोलेंगे जो आपने कल बोला था?
1: तो ये भी तो ब्लॉकिंग एनर्जी होगी. मुझे बात करते करते याद आया, समझ में आया, सॉरी,
0: एब्सोल्युटली,
1: कि मैं दूसरे के लिए जो कर रहा था अपने लिए कर रहा हूँ,
0: अपने लिए कर रहा हूँ, और जो चाहिए उसका ऑपोजिट बोल रहा हूँ सारा दिन. इट्स लाइक सेइंग कि आपका बच्चा काम पे जा रहा है बाहर, या स्कूल जा रहा है, या सब कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, आप कहेंगे डू वेल, गॉड ब्लेस यू, अच्छा करके आना, अच्छा ही होगा आज. सपोज उसकी जगह आप बोले कि नो गुड, फायदा नहीं है, तुम कितनी भी मेहनत करो तुम्हारा कुछ खास अच्छा होता नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना.
1: आज भी बुरा मत करके आना.
0: हाँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, आज भी बुरा मत करके आना, फिर भी ठीक, लेकिन तुम्हारा तो होता ही बुरा, तुम्हारे से होता ही नहीं अच्छी तरह से, ऐसे तो नहीं बोलेंगे. जो चीज किसी और को नहीं बोलेंगे, किसी और के लिए नहीं सोचेंगे.
1: तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ अपने आप को, तो फिर और को भी बोल रहा हूँ. जब अपने साथ ही ठीक नहीं हूँ तो फिर दूसरे का क्या लिहाज करूँ?
0: वो चलो नेक्स्ट स्टेप कि जो हम अपने साथ करते हैं वो दूसरे के साथ भी करने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो हम अपने साथ करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है. हर बार अगर मैंने अपने आप को कहा यू आर नो गुड, तुमसे नहीं होता है, तुम कितना भी ट्राई करो, तुम्हारी नेचर बन चुकी है ये, तो ये अपने आप को क्या दे रहे हैं?
1: श्राप, कर्सिंग यॉरसेल्फ.
0: आर थॉट्स आर वेरी पावरफुल. हम वरदान दें या श्राप दें, वो रियलिटी बन जाएगी. और जब हम अपने लिए करते हैं, सी दूसरों के लिए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी एक के लिए सोचते हैं, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेकिन अपने लिए जो हम सोचते हैं और बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट अपने लिए बार बार क्रिएट करें, आई एम नो गुड, मुझसे नहीं होता, मेरा संस्कार डिफिकल्ट है, ये नहीं चेंज होता, तो उसकी रियलिटी बनना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी.
1: क्यों?
0: क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एक थॉट क्रिएट हो रही है जब, व्हेन इट इज टीचिंग अस कि द एनर्जी यू रेडिएट आउट बिकम्स अ रियलिटी. तो अपने लिए तो कितनी बार बोल रहे हैं ये. सपोज मैंने आज दिन में 5 बार गुस्सा किया, ठीक है, 5 लोगों को कहा यू आर नो गुड. एक लाइन ही ले लेते हैं, 5 लोगों को कहा तुम्हारे से कोई काम ठीक से नहीं होता है.
1: मैंने अपने आप को तो कई बार कहा आई एम अ फेलियर, कोई बात समझ नहीं सकता है, 10 बार एक चीज बोली नहीं सीखता है, एक ही पॉइंट बार बार करते हो गलती. तो अपने आप को कितनी बार बोला मैंने?
0: 5 बार लोगों को गुस्सा किया, मतलब 5 बार लोगों को सपोज यही लाइन कही कि आपसे नहीं होता है, लेकिन 5ों बार बोलने के बाद बुरा लगा, रियलाइज किया, और फिर अपने आप को कहा तुम्हारे से नहीं होता है, तुम्हारा संस्कार चेंज ही नहीं होता है. तो दिन में 5 बार, मतलब एक एक बार एक को बोला ना, लेकिन अपने को 5 बार बोल दिया, तो किस चीज की रियलिटी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है?
1: मेरी,
0: क्योंकि 5 बार बोला. और दूसरों को जब बोलेंगे ना तो 1-2 लाइन में बोलेंगे, क्योंकि दूसरे बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं सुनने वाले हमारा खड़े होके, कहेंगे नहीं है, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं अभी करता हूँ, जाके फिर से वो चले जाएंगे. हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उससे बाहर चले जाते हैं लोग, फिजिकली भी और मेंटली भी. जैसे सपोज आप मुझे कुछ बार बार बोल रहे हैं यू आर नो गुड, तुम्हारे से नहीं होता, या तो अगर मेरे से नहीं सुना जा रहा तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगी, मैं अभी करके आती हूँ जाके वापस. अच्छा, अगर मेरे को वहीं खड़ा होना है और सुननी ही है आपकी बात, आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ लीविंग आउट, मैं फिजिकली बाहर नहीं निकल सकती इस स्पेस से, लेकिन मेंटली तो निकल सकती हूँ.
1: ब्लॉक कर लूंगा,
0: ब्लॉक, आई बी देयर एंड नॉट टेकिंग.
1: बोलना है, बोलो.
0: यस, आई बी देयर नॉट टेकिंग इट. तो दूसरे हमारे इन्फ्लुएंस के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब हम खुद खुद को बोलने लगते हैं

0: इम्पोर्टेंट है ना.
1: सपोज आपकी एनर्जी मोटिवेट करने का जब
0: इट्स वेरी इम्पोर्टेंट
1: गुस्सा आ जाता है
0: तो क्या करें. अभी सपोज मैंने गुस्सा कर दिया, गलती हो गई, मैंने रियलाइज किया. अब इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक एंड सेइंग आई एम नो गुड, ये मेरे से होता नहीं है, कैसे करूं, सिंपल एक तरीका है, आप बैठकर इवन आंखें बंद कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए और उसी सीन को जो पूरा हुआ था, पूरा का पूरा सीन वापस विजुअलाइज कर लीजिए. पूरी सामने वाला आया, उसने क्या किया था, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने कैसे उस पर रिएक्ट किया, उस सीन को फिर से क्रिएट कर लीजिए. क्योंकि 2-3 मिनट
1: रीटेक
0: जैसे हम पिक्चर में करते हैं, बिल्कुल
1: तरीके से किया अभी.
0: एब्सोल्युटली. अब उस रीटेक में सारी सीन सीनरी को एक्टर्स सेम रहेंगे. सिर्फ अपने पार्ट को देख लेना है कि अगर मुझे एक सेकेंड चांस मिले तो मैं सीन को किस तरह करूंगा.
1: और उसको नेगेटिव किया, अब पॉजिटिव तरीके से.
0: बेसिकली एक डिफरेंट स्टाइल. आप एक रोल में
1: पहले गुस्से से किया, प्यार से करो.
0: वो आप चूज करो. हर बार ऑप्शन आप अपने आप को देखो. मैं प्यार से बोल सकता था, मैं डिस्टर्ब हुए बिना सिर्फ स्ट्रिक्टली बोल सकता था. डिपेंड्स ऑन सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है. जब परिस्थिति आती है एंड हमें क्योंकि वो एक हो गया है ऑटोमेटिक मोड में जाने का, उस समय हमारा वो पुराना संस्कार आ जाता है. लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो जाती है, गई बात, वो लोग गए, अब हमारे पास है ना 2-3 मिनट का टाइम. अब बजाय कि ये सोचना क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, आज सुबह मैंने मेडिटेशन में डिसाइड किया था ना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर भी आ गया, ये सब सोच के वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. इससे अच्छा 2-3 मिनट निकालकर वो सीन को विजुअलाइज करके, अब क्योंकि डिटैच्ड है, जब परिस्थिति में होते हैं तो हम सोचते नहीं है ऐसा करो या ऐसा करो, ऑटोमेटिक होता है. लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो गई, लॉजिक माइंड वर्क कर रहा है, हम शांत हैं, अब डिटैच होकर उस परिस्थिति को फिर से देखकर अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें. दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक. क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को करते हुए देख लेंगे कि मैं इस तरह बोल सकता था, इसी बात को मैं इस तरह भी कर सकता था, एंड करते हुए देखें, बेसिकली आप वो क्रिएट कर रहे हैं इम्प्रिंट. यहाँ पर ये इम्प्रिंट जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये यहाँ स्टोर हो रहा है यहाँ पर. अब थोड़ी देर बाद एक और परिस्थिति आएगी, आएगी, आइडेंटिकल नहीं आएगी लेकिन परिस्थिति तो आएगी,
1: जल्दी आएगी,
0: आएगी.
1: जैसे फिल्मों में रोल आते हैं रोने के, तो इसके लिए नहीं रोया तो किसी और चीज के लिए रोया,
0: लेकिन प्रैक्टिस करके रख ली थी ना. दिस इज बेसिकली क्या किया, रिहर्स द सीन.
1: हाँ जी.
0: जब हम साइलेंस में बैठे, मतलब डिटैच होकर बैठे, हम रिहर्स कर ले पास्ट वाले सीन को.
1: इमोशनल बैंक, मेमोरी बैंक से मैंने इमोशन निकाली.
0: राइट. लेकिन पास्ट जो सीन पास्ट हुआ है उसको रिहर्स करेंगे और उस रिहर्सल को फ्यूचर वाले सीन में यूज करेंगे. दिस विल हेल्प टू चेंज द संस्कार. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने उस बीच के पीरियड को क्या किया, उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं. आफ्टर द सिचुएशन दो ही ऑप्शन है, या तो गिल्ट में गए,
1: सल्किंग, सल्किंग,
0: या अपने को कोसा, या फिर और ही अंदर अभी तक दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आता, इनका कुछ नहीं हो सकता. ये मीनिंग वो व्यक्ति तो चला गया लेकिन हमारा एंगर अभी भी चल रहा है. गिल्ट हो या एंगर हो, दोनों में एनर्जी तो मेरी ही वेस्ट हो रही है. एंगर मतलब मैं उनसे गुस्सा कर रहा हूँ, गिल्ट मतलब मैं अपने से गुस्सा कर रहा हूँ. कर तो गुस्सा ही रहा हूँ, एंड विच मीन्स वो मेरा संस्कार और भी कड़ा हो रहा है. इससे अच्छा इमीडिएटली अगर हम ये रिहर्सल वाला कर लेते हैं कि सिट बैक, उसी सीन को देखें, चाहे वो छोटी छोटी बातें हैं कि ड्राइवर लेट आया, मैंने रिएक्ट कर दिया. अब रिएक्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं, अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, हम 2 मिनट को यूज करें, क्योंकि आगे आने वाले पूरे वीक में ड्राइवर कई बार और भी लेट आएगा, आएगा लेट. लेकिन मैं आई सिट बैक एंड क्रिएट दैट सीन, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट दिस वे. एंड ये जो स्टोर होता जाएगा, हम एक अलग क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑलरेडी उस टाइम सिर्फ फ्यूचर के लिए भी नहीं, हमने ऑलरेडी एक एनर्जी नई क्रिएट करनी शुरू कर दी. क्योंकि मैंने थॉट कौन सी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, प्यार की, पॉजिटिविटी की, स्टेबिलिटी की. प्रेजेंट ठीक हो गया, गिल्ट खत्म, एंगर खत्म, आई हैव काम्ड डाउन.

0: ये जो क्रिएट किया ये फ्यूचर में यूज हो जाएगा, डेफिनेटली यूज होगा ये। तो सिंपल तरीका ये तो एक अपनाना ही है, करना ही है।
1: जैसे बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं ना कि जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, तो ये मेमोरी बैंक और इमोशनल बैंक में ये
0: बिल्कुल
1: सीन को क्रिएट करके रेडी रखो।
0: कंप्यूटर ऑन किया, नहीं ऑन हो रहा, इरिटेट हो गए, अब इरिटेट हो गए ना, बोल दिया जो बोलना था, अब सिट बैक, कंप्यूटर है ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, ओवरलोडेड होगा डेटा से, स्लो चला, व्हाट वाज माय चॉइस, आई कुड हैव रिस्पॉन्डेड लाइक दिस। ये है अपने ऊपर थोड़ा सा, जो कहा ना मन एक बच्चा है, तो बच्चे ने गलती कर दी, अब गलती कर दी उसको बच्चे को सिखाएगा कौन कि कैसे करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। सो वी डू दिस रिहर्सल। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि ये कॉन्शियस अटेंशन रख के करना है कि जब गुस्सा आएगा, चाहे वो अभी थॉट प्रोसेस में है, इसको पहले थॉट प्रोसेस में कर लें तो वर्ड्स में इजियर हो जाएगा। व्यक्ति की गलती, उसके कर्म के बारे में चिंतन करें, व्यक्ति के बारे में नहीं। ये प्रैक्टिस करनी होगी ऑफ सेपरेटिंग द पर्सन फ्रॉम द एक्ट।
1: हेट द सिन नॉट द सिनर।
0: एब्सोल्युटली। अभी ये सब हमने सुना है, ये सब सुना है, सब मालूम है, हमें ये भी नहीं रियलाइज हो रहा कि दोनों में अंतर कितना ज्यादा है। कहेंगे लेकिन गलती उसने की ना, तो फिर एक लाइन होगी उसने गलती की, सेकेंड लाइन में हम गलती से हटके व्यक्ति पर चले जाते हैं।
1: बट ये तो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने ये सिखाया, जिसने भी ये प्रोग्राम देखा उसने ये लाइन सीखी कि हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है, तो वो किससे सिखाया हेट द सिनर नॉट द सिन? क्या हम पैदा हुए ऐसे?
0: नहीं, हमने ये मालूम है, लेकिन कहीं कभी ना कभी गलती के बारे में चिंतन करते करते हमने व्यक्ति के बारे में चिंतन क्यों करना शुरू किया? क्योंकि हम काफी सारा उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करके यहाँ स्टोर करके पहले से ही रखते हैं। आप ये देखो, सारा दिन में हम लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं, हम बहुत सारी बातें सोचते हैं जो हम उनको बोलते नहीं है कभी भी। वी नेवर से इट टू देम, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हैव मास्टर्ड दिस आर्ट कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। सामने किसी ने कुछ किया, फिर भी हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन अंदर सोच लिया ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कुछ आई बात, हमने प्यार से बात कर दी क्योंकि हमने कहा बार बार अभी कितना बोलेंगे इनको, अंदर सोच लिया रख लिया। लेकिन फिर जब कोई स्टिम्यूलस आया, ये सारा कुछ जो यहाँ स्टोर करके रखा था, और तब तो कितनी पुरानी बातें आती हैं, 10 साल पहले ऐसे किया था आपने, 20 साल पहले वो शादी वाले दिन आपने ऐसे किया था, ये सब क्यों निकल कर आता?
1: फिर माँ ये क्यों नहीं बोलती जब तो 2 दिन का था या 6 दिन का था या 6 महीने का था तब बुरा किया, तब वाली बातें बुरी क्यों नहीं लगती?
0: क्योंकि उस समय गुस्सा नहीं आया था।
1: क्यों
0: गुस्सा नहीं आया था? एक्सेप्ट द चाइल्ड ना।
1: चेंज कैसे हो जाती है माँ?
0: जब उनकी एक्सपेक्टेशंस, एक छोटे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन आती है बच्चे से कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। एक छोटा बच्चा क्या करता है, जो पेरेंट चाहे बच्चा करता है। छोटे बच्चे से बड़ा होते होते
1: भी तो होता है, बच्चे के पीछे पीछे हम भागते रहते हैं, वो भागते
0: वो है, लेकिन बच्चे को
1: बना देता सर्वे
0: बच्चे को जो जो सिखाते हैं। सी बच्चा अपनी इंटेलेक्ट का यूज करना शुरू करता है जब वो थोड़ा सा है ना,
1: पहले बड़े फैन बोलो फैन है,
0: नो इवन आफ्टर दैट लिटिल एल्डर ऑल्सो वो कहना मानता है, क्योंकि उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही कितना है। हम कहते हैं बच्चा कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे वो 10, 12, 13 साल का होता है और जब वो अपनी चॉइस की चीजें करना शुरू करता है जो उनकी पसंद की नहीं है, कहेंगे माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, इवन द वर्ड इज यूज माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल।
1: उसके बाद बोलते ही इज गोइंग इन द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ।
0: वेरी गुड,
1: ये वाइफ इज गोइंग इन कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड।
0: एब्सोल्युटली, व्हिच मींस व्हाट, व्हाट इज द मीनिंग,
1: हमारे कंट्रोल से बाहर उनके कंट्रोल में है।
0: मतलब जो वो कह रही हैं वो कर रहा है, जब वो स्कूल कॉलेज गया तो जो दोस्त कह रहे थे वो कर रहा है, और बचपन में वो क्या कर रहा था,
1: जो जो मैं बोलता था,
0: तो वो कब तक अच्छा था, बहुत कब तक आज्ञाकारी था, वफादार था, लॉयल था, संस्कारी था, जब तक वो जो मैं कह रहा था वो कर रहा था। लेकिन जब उसने चेंज होना शुरू किया, कुछ

0: और करना शुरू किया तब गुस्सा आना शुरू हुआ। अब हमें ये दिस इज लाइक वेरी सटल, लेकिन इसकी सारा दिन प्रैक्टिस की अगर गुस्से को खत्म करना है, एक कर्म के बारे में चिंतन, व्यक्ति के बारे में नहीं। और उसके बाद जब वो बात खत्म हो जाती है, जब गुस्सा आता है तो वो बात चित्त पर ज्यादा समय चलती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी गलती के बारे में बात करें तो आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे ही बात खत्म हो जाएगी आपके चित्त पर नहीं रहेगी वो बात। वो बात आई, बात के बारे में क्या, लेट्स से आपके बेटे ने आपको फोन किया, कहा ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये करना है, ये आपको क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए, उसने कुछ कहा राइट, ये मुझे लगता है ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप ऐसा ऐसा करना चाहेंगे, आपने कहा नो नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे टू डू इट, ठीक है। तो फिर वो जो कह रहा है, जो काम, जो बात, उसके ऊपर आपने अपनी राय दे दी, एडवाइस दे दी, बात पूरी हुई। इवन अगर वो जो कह रहे थे वो आपको बात पसंद है,
1: बेवकूफ है, ये सोचा भी क्यों ऐसा,
0: दैट इज इट,
1: इतना बड़ा हो गया अभी भी अक्ल नहीं है, अभी ये बात पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: दिस अभी आपको डिफरेंस दिखा, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये थिन लाइन है, दिस यू हैव जस्ट मूव्ड फ्रॉम द एक्ट टू द पर्सन।
1: लेकिन जैसे आप बात कर रही है, मुझे सुबह फोन आया आपके सामने, मैंने बोला नहीं बेटा ये गलत बात है, फायदा क्या है करके, फायदा नहीं है, इसी से ओके डैड बात खत्म हो गई
0: राइट।
1: अगर उसके बाद में बोलू इतना बड़ा हो गया,
0: लेकिन वो आपने उसको बोला नहीं, लेकिन अब आप अपनी चेकिंग करेंगे,
1: मैंने नहीं सोचा ऐसा,
0: ये चेकिंग,
1: मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मुझे पूछा,
0: हाँ पूछा, अगर नहीं पूछा होता
1: तो फिर तो गुस्सा था।
0: हाँ दिस थॉट्स, धीरे धीरे ये जो हमारा संस्कार है ना उस पर प्यार से काम करना है, ये फोर्सफुली नहीं जाएगा एक दिन के अंदर। कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने मेरी कही हुई बात मानी नहीं, किसी ने जिस तरह से मैंने कहा था उसने बिल्कुल ही एक अलग तरह से कर दिया, वो हर बार मेरे से पूछते थे इस बार पूछा नहीं, अच्छा मुझसे पूछने की बजाय अब इस बार
1: किसी और से
0: पूछना शुरू कर दिया, ये मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका अच्छा चाहिए या मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो मेरे कंट्रोल में रहे, ये चेकिंग।
1: पहले मेरे से पूछता था कि माँ मेरे साथ पिक्चर चलोगे, माँ मेरे साथ बाहर चलोगे, अब कम से कम पूछ तो ले, सीधा बीवी को लिया चला गया, बात भी नहीं करता मैं कि जिंदा हूँ कि मर गई हूँ कि क्या हूँ, ये कितनी चिंतन होती
0: और
1: है।
0: और उसके बाद ये भी बोलेंगे मैं जाती थोड़ी साथ में बोलता तो
1: खाली पूछ लेता।
0: हाँ अब ये जितनी देर चल रहा है चिंतन, चिंतन चल रहा है व्यक्ति के बारे में, उतनी देर वो प्यार की एनर्जी
1: ब्लॉक्ड
0: है। ये भी अगर हम उस समय अपने आप को याद दिला दे ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक जैसे सिंक नहीं ब्लॉक हो जाता है तो कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गया ना,
1: आपने सांस का अच्छा बोला,
0: हाँ ब्लॉक,
1: ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, सडनली ले लो,
0: एब्सोल्युटली इमीडिएटली, डोंट लेट इट रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि सफोकेशन उनको नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सफोकेशन दूसरे को नहीं हो रहा,
1: घुटन तो मुझे हो रही
0: है, मुझे होने वाली है, वो चले गए घूमने के लिए, वो तो चले गए ना, दे आर फाइन,
1: और यहाँ से भी जो भेज रहा हूँ
0: वो तो है, वो तो रीच होगा ही, बट वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू सी आवरसेल्फ।
1: आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, चलो वो चले गए, वो रेस्टोरेंट में बैठे डिनर खा रहे हैं और मैं यहाँ से कोसता जा रहा हूँ, तो उनको नहीं फील होता, पता नहीं अजीब सा क्यों लग रहा है,
0: नहीं इतना विजिबल ही नहीं आएगा,
1: नहीं होता,
0: नहीं इतना विजिबल ही नहीं आएगा, सपोज वो 20 किलोमीटर दूर किसी रेस्टोरेंट में या मूवी थिएटर में बैठे हैं,
1: और आप नहीं,
0: होगा क्या, होगा क्या, ओवरऑल रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन आना शुरू होगा,
1: सुबह मिलेंगे,
0: नहीं नॉट नेसेसरी मिले भी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मिलने से ही होगा, एक वाइब्रेशन रीच तो हो रही है उसी टाइम में जब आप सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे पता नहीं चलेगा जैसे कि कुछ मेरे पास अभी आ रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि वाइब्रेशन रीच कर रही है, वो वाइब्रेशन उनको टच करके वो जो आपके बारे में सोचते हैं उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा।
1: Really?
0: अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे हूँ, आप जो मेरे बारे में सोचेंगे मुझे पता नहीं चलेगा, आई डोंट हैव दैट मच कैचिंग पावर कि मैं आपकी थॉट कैच कर सकूं, लेकिन आप भेज तो रहे हैं ना, मेरे को रियलाइजेशन ये

0: समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट थॉट कौन सी है कि यू आर थिंकिंग लाइक दिस ऐसा, लेकिन जो आप थॉट भेज रहे हैं वो मुझे यहाँ रीच होती है. एंड ये क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ तो आपकी थॉट मेरी थिंकिंग पर इन्फ्लुएंस करती है, एंड फिर मैं भी आपके बारे में एक अलग तरह से सोचना शुरू कर देती
1: हूँ. अच्छा नहीं सोचते
0: नहीं होता. एंड फिर क्योंकि मैं भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही हूँ फिर वो आप तक पहुंचेगी.
1: अच्छा एक सेकेंड, पहले ही मैं प्रॉब्लम में हूँ कि ये बंदा ठीक
0: नहीं. दिस इज इट.
1: ऊपर से फिर मैं उसके बारे में सोचूं, फिर वापस उधर से और आए
0: और जब वो
1: स्थिति बढ़ जाएगी.
0: नहीं नहीं, और जब मैं आपके बारे में वैसा सोचूंगी फिर आपकी तो ऑलरेडी ऐसे थी उस टाइम, आपकी और हो जाएगी फिर मेरी हो जाएगी.
1: देखा मैंने सही बोला था, मेरा और कन्फर्म हो जाएगा.
0: यस
1: देखा.
0: यस
1: बिल्कुल मेरी सोच सही थी.
0: ये टिपिकली अगर हम ऐसे रिश्तों में देखें जहाँ स्ट्रेन ज्यादा होता है, सपोज सास बहू का रिश्ता, यू नो, जहाँ हम मेहनत ज्यादा करते हैं और हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिलती है. कई रिश्ते ऐसे, इवन कई बार ऑफिस में एक बॉस के साथ, कोई एक फ्रेंड के साथ, मतलब जहाँ यू विल फाइंड कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ एडजस्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मतलब एफर्ट ज्यादा रिजल्ट कम, ऐसे कई रिश्ते होते हैं. और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और रिश्ता हमेशा बहुत नेचुरल एंड बहुत कंफर्टेबल है. तो ये जो एफर्ट वाले रिश्ते होते हैं इनमें जनरली ये चल रहा है, ये एनर्जी एक्सचेंज अंदर से, एंड दोनों बात बहुत प्यार से करते हैं एक दूसरे के साथ, काफी ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा कुछ ना बोल दें जो दूसरे को बुरा लगे, मैं उनको हेल्प करूं, उनके लिए ये करूं, उनका कहना मानूं, लेकिन अंदर से नहीं अच्छा सोच रहे हैं.
1: अगर आप मेरे बारे में कोई भी चीज नेगेटिव वर्ड यूज कर ले, सोचते जा रहे हैं और मुझे बोल नहीं रहे हैं, तो क्या जब मुझ में ऐसी थॉट आए कि मैं आपको उतना मतलब प्यार से नहीं देख रहा हूँ, या मेरे अंदर से आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं नहीं निकल रही हैं, तो क्या मैं रियलाइज नहीं कर पाता कि ये मुझ में ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है? शायद वो मेरे बारे में कुछ सोच रहे होंगे.
0: राइट.
1: अभी उधर से नेगेटिव तीर आया, कभी कभी मुझे लगता है यार इस बंदे को मैं इतना प्यार करता हूँ, सडनली मेरे अंदर उसके लिए दुआएं, प्यार, खुशियां क्यों नहीं निकल रही हैं? एक तो हो सकता है कि मेरे में कोई गलती है या मेरी एक्सपेक्टेशंस में है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वहां से अजीब तीर आ रहे हों.
0: लेकिन दोनों केस में हमारे पास ऑप्शन क्या है?
1: क्या
0: सी सपोज, क्योंकि ये हम में से बहुतों के साथ, मतलब हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ही अनुभव किया होगा, यू नो, विद दिस इज अ सोल टू सोल कार्मिक अकाउंट. और एक तो उसमें ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एक पास्ट कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है, यू नो, कई रिश्तों में इतनी मेहनत कर लो लेकिन तो भी वो नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो पास्ट कैरी फॉरवर्ड भी बहुत स्ट्रांग है. तो अब दोनों में से एक को, इस सर्किट को तोड़ना पड़ेगा. अब जैसे आपने कहा कि आप मेहनत कर रहे हैं कि सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना है, फिर भी सडनली बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी, बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी और माइंड फिर से उनकी गलतियों की तरफ जाएगा. आप फिर विशेषता को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन फिर गलती का चिंतन होने लग जाएगा. मतलब समहाउ नेचुरल रूप से मेरे अंदर उनके लिए बहुत अच्छी थिंकिंग जेनरेट ही नहीं होती.
1: नहीं, अब नहीं हो रही, पहले थी.
0: चेंज हो रही है. यस, चेंज हो रही है.
1: वो कर रही है या मैं कर रहा हूँ?
0: एक्चुअली बहुत पावरफुल रीजन होता है कि सामने वाला क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर कर भी रहा है, नहीं कर रहा, वी डोंट नो. इवन अगर कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आई कांट जस्ट सकम्ब टू दैट ना.
1: तो अब मैं क्या करूँ?
0: सपोज मैं आपके लिए पहले अच्छा सोच रही थी, सडनली आई फील के नहीं, मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये बात भी नहीं अच्छी लग रही, मुझे ये चीज भी नहीं अच्छी लग रही. इट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड देन आई स्टॉप एंड आई से कि मैं पहले तो नहीं गलत सोचती थी इतना इनके बारे में, अभी मुझे बार बार नेचुरल गलत थिंकिंग क्यों आ रही है? तो सपोज आई से टू माई सेल्फ, हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो. अच्छा, अगर हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो, लेट्स से मेरे को श्योर भी हो जाए, ओके, कि नहीं वो ही मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, इसीलिए मेरे अंदर भी ऐसी थिंकिंग आनी शुरू हो गई है. अगर

0: ये भी सच है तो भी मुझे क्या करना होगा फिर? अभी
1: बताइए।
0: मुझे फिर कॉन्शियसली और अटेंशन रखकर अपनी थॉट को चेंज करना होगा, ताकि उनकी थॉट मुझ पर इन्फ्लुएंस करने की बजाय मेरी थॉट उन पर इन्फ्लुएंस।
1: ब्यूटिफुल,
0: क्योंकि वो भी तो होगा ना, दोनों में से एक इन्फ्लुएंस कर रहा है।
1: तो मैं मतलब इतना प्यार भेजूं और इतनी दुआएं भेजूं कि वो उनका जो नेगेटिव है,
0: ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मुझे तो ये पहले अच्छे नहीं लगते थे। हाँ। मैं तो इनके लिए अच्छा सोच ही नहीं पाती थी कुछ भी, आजकल कैसे मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, आज मुझे अच्छी हाँ। कैसे लग रही है इन चीजें ये सारी, क्योंकि समवेयर फ्रॉम दी अदर साइड
1: रियलाइजेशन भी हो सकता है अदर साइड को, यदि अंदर से तो अच्छा आदमी।
0: एक्चुअली वो रियलाइजेशन तभी आएगी जब दी अदर साइड इज सेंडिंग वेरी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि तब मुझे आपके अंदर की अच्छी चीजें दिखने क्यों लगेंगी, क्योंकि वहां से एनर्जी बहुत क्लीन आने लग गई है।
1: अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ गलत फहमी हो या कुछ गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं उसको आपको प्यार भेज भेज के ब्लेसिंग भेज के दुआएं भेज के ठीक कर सकता हूँ रिलेशनशिप?
0: एब्सोल्युटली,
1: बिना बात किए।
0: बिना बात किए, बातों से तो बहुत रिश्ते ठीक होते भी नहीं है।
1: तो क्या करूँ मैं?
0: क्योंकि बातों में क्या होता है, अंदर कुछ भी हो सकता है, बातें बहुत मीठी होती हैं।
1: क्या इसके लिए मेडिटेशन का समय ढूंढे?
0: मेडिटेशन का समय तो ढूंढे ही, लेकिन फिर क्या होता है, मेडिटेशन के टाइम तो हम सपोज 5 मिनट, कितनी देर एक सोल के लिए कितना सोच पाएंगे, 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन बाकी 24 घंटे जब भी वो याद आते हैं या जब भी उनसे रिलेटेड बात कोई याद आती है, और अगर वो थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन, ना सपोज आप और मैं बैठ के एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और बात करते करते अगर हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव की तरफ जाने लगे, लेकिन वो तो ऐसे हैं, उस दिन ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, स्टॉप, नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड टू गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन। मुझे ये वाला चिंतन नहीं करना है, क्योंकि आजकल मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ,
1: प्रोजेक्ट बीइंग ब्लिस,
0: यस एब्सोल्युटली, स्पेशली विद दैट वन सोल, यू नो, जहाँ पर एक स्ट्रांग अंडरकरंट चल रहा है, या जहाँ मुझे थोड़ी सी मेहनत करके उस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना है।
1: सिस्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, कैन वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड?
0: डेफिनेटली,
1: थैंक यू सो मच,
0: शांति,
1: थैंक यू सो मच, नमस्कार।
2: अला अला अला।

0: के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2045 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं डिजिटल जागरूकता के ऊपर। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। आज के इस डिजिटल युग में विशेष रूप से शिक्षा, संचार और मनोरंजन के लिए हमारी जो तकनीक हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के चलते हमारी दिनचर्या कई बदलाव इसमें आई है। हालांकि इस तकनीक के विकास के साथ साथ हमें डिजिटल जागरूकता और वेलनेस की आवश्यकता है। इसकी हमें महसूसता भी हो रही है। डिजिटल वेलनेस का मतलब है तकनीक का संतुलित और समझदारी से उपयोग करना, ताकि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। एक होता है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हम सभी जो शारीरिक स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए जो भी हम खाने से पहले अपने हाथ धुलाई करते हैं, रोजाना सुबह स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, वैसे डिजिटल युग में अगर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो डिजिटल स्वच्छता अपनाने की जरूरत है। मोबाइल के उपयोग के बाद हमें उसमें कैद नहीं होना है, बल्कि उससे बाहर निकलना है। हमें अभिमन्यु नहीं बनना चाहिए जो चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया पर निकल नहीं पाया, बल्कि हमें क्या बनना है, अर्जुन। अर्जुन की तरह बनना है जो घुस कर निकलना भी जानता है। एक होता मानसिक स्वास्थ्य। लगातार स्क्रीन पर समय बिताते रहने से तनाव, चिंता और अवसाद का खतरा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर तुलना करने नकारात्मक समाचारों के संपर्क में आने से अत्यधिक जो है सूचना के बाहर से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डिजिटल वेलनेस को अपनी दिनचर्या में हमें अपनाने से क्या होता है, मानसिक स्थिति को संभालने में मदद मिलती है। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। लंबे समय तक बैठने और स्क्रीन के सामने रहने से शारीरिक जो है स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। यह मोटापा, आंखों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें एक और बात होती है सामाजिक संबंध। डिजिटल युग में लोग एक दूसरे से संवाद करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन इसने वास्तविक जीवन में सामाजिक संबंधों को भी क्या किया, प्रभावित किया है। अक्सर लोग वर्चुअल इंटरेक्शन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वास्तविक मित्रता कमजोर होती जा रही है और संबंधों में दरार आ रही है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हमारे आगे की चर्चा जारी रखते हुए हम चलते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। एक होता है डिजिटल वेलनेस के लिए सरल उपाय, अतिरिक्त ऐप्स हटाएं। डाउनलोड किए गए 70% ऐप्स हमारे उपयोग में नहीं आते हैं। ऐप्स की जो संख्या है जितनी अधिक होगी वे मोबाइल को क्या करेगा, मोबाइल और दिमाग पर उतना ही अधिक जगह लेंगे, मोबाइल उतना ही अधिक अव्यवस्थित हो जाएगा। जो ऐप हम ढूंढना चाहते हैं वह अधिक कठिन हो जाएगा। कम ऐप्स अधिक स्पष्टता और उच्च उत्पादकता का होता है। एक होता है कि लोग ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका न करना अधिक लाभदायक है। ये हमें लाभ देगा कि हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही ड्राइविंग के दौरान जो है बंद कर दे। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के कारण ध्यान भटकने से या तो खुद का या तो दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बन रहे हैं। यदि हम बात करने में व्यस्त हैं तो हमारी आंखें देख रही है लेकिन देखते भी देख नहीं रही है, क्योंकि मस्तिष्क दृश्य को उतनी सटीकता से ग्रहण नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। यही कारण है कि गाड़ी चलाते समय संदेश भेजना, देखना और बात करना, विशेषकर उनके लिए जो भावनात्मक रूप से क्या है आवेशित हो, जो खतरनाक होता है। जो इसमें क्या होता है, एक होता है वेबसाइट घड़ी का प्रयोग करें। इसमें हाँ ज्यादातर क्या होता है, लोग बिस्तर पर सिर के पास मोबाइल रखकर इसे अलार्म के रूप में उपयोग करते हैं। यह आदत जो है मोबाइल से निकलने वाले जो हानिकारक रेडिएशन के कारण हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर हमारी नींद को क्या करता है, प्रभावित करता है।

करती है। एक पारंपरिक जो है अलार्म घड़ी खरीदी, इसमें क्या करना है स्नूज लगा दें, हाँ, और जो अपने आप वो रुक जाती है उसे कार्य क्षमता न हो और आपको अलार्म बंद करने की है, बंद करने के लिए भी जागने के लिए है मजबूर ना करें। एक होता है स्क्रीन फ्री, नाश्ता दोपहर और रात का भोजन करें। हमारा मन मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। जब हम स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और खाने से ध्यान हटा देते हैं तो अपने मस्तिष्क को बता रहे होते हैं कि हमारे लिए सूचनाएं खाने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम खाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क जो है पेट को संकेत भेजता है कि भोजन महत्वपूर्ण है, इसलिए भोजन को ठीक से पचाने और इसे ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक पाचन जो है पाचक रस उत्पन्न करें। इसी कारण से भारतीय संस्कृति में मौन रखकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। होता है एक समय में एक गैजेट, हमें क्या करना है, एक समय में एक गैजेट का ही उपयोग करना है। मानव मस्तिष्क एक ही समय में दो कार्य नहीं कर सकता, अधिकतम जो भी उपयोगिता के लिए एक साथ कई गैजेट का उपयोग करने के बजाय एक समय में एक गैजेट का उपयोग करना सीखें। नोटिफिकेशन बंद करें, सूचनाएं जो है बंद करने से बड़ा अंतर आ सकता है। हर बार जब फोन पर कोई सूचना आती है तो यह ध्यान भटकाती है और उस ध्यान को एकाग्र करने में क्या होता है, मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जितनी अधिक सूचनाएं प्राप्त होगी भटकाव उतना ही अधिक होगा और उत्पादकता जो है कम होगी। इसे कुछ दिनों तक आजमाएं और सकारात्मक प्रभाव स्वयं देखें। एक होता है इंटरनेट उपयोग करने की सीमा निर्धारित करें। सोशल मीडिया अत्यधिक जो है उलझाने वाला है। इसकी उलझाने की प्रकृति के कारण हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हमने स्क्रीन के सामने कितना समय बिताया है। बिना सोचे समझे स्क्रीन पर उंगली घुमाना लक्ष्यहीन तरीके से घूरना और

जो करे इससे अधी हाँ सूचना मिलने पर ध्यान भंग नहीं होगा। यदि मोबाइल पर फ्लिप कवर नहीं है तो फोन की स्क्रीन वाला जो हिस्सा है हमेशा नीचे की ओर रखें। इससे हमारा जो बार बार मोबाइल संभालने का आकर्षण कम हो जाता है। एक होता डिजिटल जो उपवास, इसे कुछ दिनों के लिए बंद रखने के लिए हमें क्या करना है। उपवास में कैंसर रोधी गुण होते हैं, डिजिटल उपवास से कैंसर रोधी इसमें गुण होते हैं। हर हफ्ते एक पूरे दिन के लिए सभी प्रकार के स्क्रीन से दूर रहकर और प्रियजनों से हाँ प्रियजनों के साथ रहें, उनके साथ समय बिताकर डिजिटल उपवास करने से मदद मिलती है। शुरुआती कुछ घंटे बहुत अधिक हाँ बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम स्क्रीन मुक्त समय का आनंद लेना शुरू कर देंगे। मस्तिष्क को अपने सर्वोत्तम कामकाज और विकास के लिए डिजिटल साइलेंस की आवश्यकता होती है। एक होता है स्क्रीन पर टाइम का जो एक कंट्रोल करना, स्क्रीन टाइम कंट्रोल ऐप इंस्टॉल करें। यह क्या करता है, स्मार्टफोन पर अंतर्निहित जो सुविधा है वो प्रत्येक ऐप के लिए स्क्रीन समय को सीमित करना, समय बर्बाद किए बिना स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में काफी मदद कर सकता है। एक है प्रत्येक मिनट के बाद, प्रत्येक मिनट के बजाय हमें क्या करना है, घंटे में सोशल मीडिया चेक करें। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इसकी जांच करते हैं। लगातार जांच करने की इच्छा को कम करें, कम करके हम क्या करते हैं उत्पादकता जो है वो काफी हद तक हम बढ़ा सकते हैं। अनुभव और रिसर्च से पता चलता है कि पहले 20 सेकंड में जांच करने की इच्छा सबसे अधिक होती है। यदि हम इन हाँ पहले 20 सेकंड पर काबू पा सकते हैं तो मन को उस ऐप से हटाना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग भी शुरू करने से पहले यह तय करें कि कितना समय ऑनलाइन में बिताना है। समयबद्ध खरीदारी अनावश्यक तनाव समय और धन खर्च को कम करने में मदद कर सकती है। यदि हम सोशल मीडिया की लत पर काबू पाने के बारे में गंभीर हैं, तो सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया हमें ऐप में लंबे पासवर्ड का उपयोग कर ताकि करें उससे ताकि इससे क्या फायदा होगा, जब भी हम उस ऐप को चेक करना चाहें तो पासवर्ड टाइप करना पड़े, तो लंबा जो हम रखते हैं अपना पासवर्ड तो उसको टाइप करने में समय लगता है, तो हम सोच समझकर टाइम से ही उसका उपयोग करेंगे। एक होता है प्रत्येक दिन कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें, या सप्ताह में कम से कम 4 दिन हाँ शारीरिक व्यायाम बहुत शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। ये इंटरनेट की लत के विकल्प या सहायक उपचार के रूप में व्यायाम काफी कारगर है, क्योंकि इसमें क्या होता है अवसाद चिंता को कम करने जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ है। एक होता है सोने से पहले, सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इसका प्रयोग न करने से सो जाने के लिए हमारे जो मस्तिष्क और शरीर को आराम करने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क हाँ मेलाटोनिन जो नामक एक नींद हार्मोन होता है हाँ जारी करता है, जो शरीर को आराम देने में मदद करता है। लेकिन जब हम देर रात तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, देखते हैं

स्क्रॉल करते हैं, फिर खेलते हैं, तो मस्तिष्क मेलाटोनिन की जो स्त्राव होता है में वो देरी करता है और परिणाम स्वरूप नींद आने में देरी होती है। गहरी नींद और पर्याप्त नींद के लिए सोने से कम एक घंटे पहले हमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। हाँ, किसी मुद्रित पुस्तक से कुछ भी पढ़िए। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। एक होता मोबाइल फोन का प्रयोग कम से कम जागने के एक घंटे बाद तक ना करें, है ना। भारतीय संस्कृति में क्या है, जागने के बाद पहले एक घंटे में प्रार्थना करने, जप करने, कुछ सकारात्मक पढ़ने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस पहले घंटे के दौरान हम जो भी भोजन, जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी भोजन और दिमाग को हम खिलाते हैं, वो क्या होता है, वह सूक्ष्म रूप से हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। यदि इस दौरान दिमाग को हम व्हाट्सएप से, फेसबुक से आदि से हम अगर बेकार की सूचनाओं से अगर हम दूर रखें, न भरें ये सब, अगर हम ये भर देंगे तो बाकी जो दिन भर का जो मूड है वो अच्छा नहीं रहेगा। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय इसकी प्रभावशीलता और नकारात्मकता के प्रति जो भी जागृत है, नकारात्मक सामग्री से दूरी बनाए और सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले संदेशों पर ध्यान केंद्रित करें। इसका निष्कर्ष क्या है, डिजिटल जागरूकता हमें सिखाती है कि कैसे हम तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक संबंधों को भी हम मजबूत कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक भी है। आवश्यक तो है ही कि हम डिजिटल वेलनेस के महत्व को समझे और इसे जीवन का एक हिस्सा बनाए। तो आपको पता चल गया कि हमें डिजिटल सामानों का जो भी उपयोग करना है किस तरह करना है। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है, जितनी भी बातें हैं इसका हमें बहुत मुख्य रूप से हमें इसका ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जल थल जल थल खुद भी चाहता मनवा सर
1: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं
0: एक समय पर
1: मैं तो सोचता था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पर लग जाऊंगा कहीं एस्टैब्लिश हो जाऊंगा कमाने लगूंगा फिर शादी के बारे में सोचूंगा लेकिन ये सब
2: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी

0: सर साथ
1: मैं तो यही चाहता हूँ सर, लेकिन उधर माँ का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं, आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
0: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।

0: पतली कमर तिरछी नजर बाहर बगा के ना दे।
1: आई झूमे रे झूमे रे झूमे रे झूमे
0: ढिंग पटा पट ढिंगड़ी पकड़ो।

0: सुनी हर वेद हंसी आती है मुझे।
1: मेरी उल्फत हो सनम बड़ी मुश्किल न फंसी, मैं कहूँ दर्द दे।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस

0: प्यार पे सब कुछ है कुर्बान,
1: हम भी है दिल के शाह जहां।
0: प्यार पे सब कुछ है।

0: खिल मौता था।
1: हम फिर भी जी रहे हैं जख्मों को सी रहे हैं, हम फिर भी जी रहे हैं जख्मों को सी।

की गैर को खबर न मिले, समझने वाला समझ ले। ये भी अंदाज है इस बात के इजहार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल

एतबार टूट गया कि सब्र टूटने लगा। बहार बोलिए मौका नहीं इनकार का, हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कर दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आंख में दिल

झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

अधर कहीं आ जाए वो नजर कहीं कहीं ये हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा मेरे लब गा।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदार दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: सच गई।
1: धीरे धीरे हौले हौले थक गई।
2: है जिया हमरा कहरवा ना तेरे आज मैं ना फस गई।
3: फस गई
2: फस गई।

0: फल खाए ऐसा तोरी पतली कमर जैसे डगमग हो शराबी की नजर है।
1: फल खाए ऐसे तोरी पतली कमर।

तोरे जुल्फ में फंस गया मोराजिया, रे नागन डस गई।

0: हाँ ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निसार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?